ये जो गाना है ना तेरी ओर, ये बहुत ही सारे वेडिंग्स में एज ब्राइडल एंट्री काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारी प्यारी प्यारी सी शर्माते हुए दुल्हने जो हैं अपने दूल्हे के पास, मैं आ गई तेरी ओर, एकदम हल्के हल्के स्टेप्स करते हुए, तो मुझे तो यही याद आता है इस सॉन्ग से। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 FM विद मी यानी कि आरजे सिमी, और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। हमारा साथ आज है 6 बजे से रात के 9 बजे तक, 3 घंटे। जी हाँ, और अभी तो सिर्फ 7:10 हुए हैं, तो अभी काफ़ी वक्त है, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ आपको। और हम आज बातें कर रहे हैं वन सॉन्ग वन स्टोरी के बारे में, और अगला जो सॉन्ग है वो है कल हो ना हो। मतलब इतना डीप सॉन्ग ये मुझे लगता है, और काफ़ी फेमस हुआ था, सोनू निगम जी ने इसको गाया था। इनफैक्ट जो डायरेक्टर हैं करण जौहर, उन्होंने काफ़ी वेट किया था बिकॉज सोनू निगम की डेट्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, बट उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना जो है सोनू निगम ही गाएंगे। और आप शाहरुख खान के को ऐसे फिल्म पे देखते हैं और पीछे अगर उनकी आवाज़ सोनू निगम की होती है, मैं बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स की बात करूँ जैसे सूरज हुआ, मध्यम वगैरह भी, तो कमाल का मैजिक होता है स्क्रीन पे, वैसा ही कुछ हुआ इस सॉन्ग में भी, और ये बन गया नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग। जी हाँ,

जी हाँ, जिंदगी को जीना चाहिए, बहुत सारी मस्खरी भी करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें उतनी पसंद नहीं है, फिर भी करनी पड़ती है, जैसे कि ग्रॉसरी शॉपिंग। बट कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है, उसका भी सोल्यूशन है अपने पास। आप जा सकते हैं देसी मंडी में, जहाँ की ग्रॉसरी रन ना अमेजिंग एक्सपीरियंस बन चुका है। लुइसविल में है ये आपको ऑफर करते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स और ऑथेंटिक इंडियन ग्रॉसरीज से लेके हलाल मीट, स्पाइसेस, स्वीट, स्नैक्स और बहुत सारा डिलीशियस खाना भी। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप ग्रॉसरी ले रहे हो, सब कुछ अंडर वन रूफ है, खरीद लिया, थोड़ा थक गए, घर घर जाके वापस खाना बनाने का मन नहीं है, तो नहीं करना है जी। वहीं उसी ग्रॉसरी स्टोर में खाने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पे मिलता है चाट, बहुत चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, डोसा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वहाँ जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए डेली एसेंशियल से लेके फैमिली फीस तक के सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। अगली बार जब आप ग्रॉसरी शॉपिंग का सोच रहे हो तो देसी मंडी लुइसविल का भी ज़रूर सोचे। जी हाँ, और आज हम बातें कर रहे हैं वन सॉन्ग वन स्टोरी में, और जो नेक्स्ट सॉन्ग इन द क्यू है वो है कजरा रे। और नैनो की जब बात होती है तो ऐश्वर्या राय बच्चन की नीली नीली आंखों के बारे में बातें होती ही है। और इस सॉन्ग में जो है एक बाप बेटे का डुओ था। पहले ऐसे प्लान किया गया था कि एक बाप बेटे का डुओ हो, विच इज़ अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, और उसमें ऐश्वर्या राय भी हैं, जो कि बाद में उनकी उस परिवार का सदस्य बन जाती है। अमिताभ की बहू और अभिषेक की वाइफ बनती है, विच मेक्स द सॉन्ग इवन मोर स्पेशल और बराती सुनने।

0: रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

आई मीन मुझे जालिमा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? मतलब मैं तो आपके लिए गिव अवे राउंड लेके आई हूँ, जिसमें आपसे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल किया जाएगा, और अगर आपको जवाब पता है तो आप मुझे कॉल करके बताइए, और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। ये सब के बाद अब जालिमा थोड़ी बोलना होता है। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM। मैं हूं आपके साथ 6 बजे से रात के 9 बजे तक, और अभी हमारा गिव अवे राउंड शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक सवाल करने जा रही हूं और उसका जवाब आपने देना है। सवाल ये है कि जो 3 इडियट्स मूवी थी, उसमें रैंचो का असली नाम क्या बताया गया था? मूवी के एंड में बताया गया था कि रैंचो तो एक फेक नेम था, उनका असली नाम कुछ और था। और आपको बताना है मुझे कॉल करके कि वो असली नाम क्या था। नंबर है 9722355555।

हमारा गिव अवे राउंड यहीं खत्म होता है। हमने आपसे सवाल किया था कि जो मूवी है थ्री इडियट्स, उसमें रैंचो का असली नाम क्या है, और मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि उनका नाम ना मूवी के एंड में, टॉवर्ड्स द एंड मेंशन किया जाता है, जो कि है फुनसुक वांगडू। और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, और सबसे पहले सही जवाब दिया है कुणाल गुप्ता। तो कुणाल गुप्ता ने जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से, $10 का गिफ्ट कार्ड। कुणाल जी, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं बाकी लोगों को बता दूं कि फन पिज्जा किचन जो है ना, यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई स्लाइस वेट कर रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बना है अचारी पनीर पिज्जा, जो कि टैंगी अचारी पंच जो है इसमें सॉफ्ट पनीर्स मेल्ट करते रहते हैं स्पाइस के मैजिक में। और वहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट लवर्स हो, तो तंदूरी चिकन पिज्जा ना आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि उसका जो स्मोकी परफेक्शन है तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बड्स पे हिट करता है। अगर आपको बोल्ड पसंद है या फिर अगर आपको ब्यूटिफुली बैलेंस्ड पसंद है, तो आप जा सकते हैं फन पिज्जा किचन, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के लिए एक एक स्लाइस वेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको मेन्यू या और कोई डिटेल्स चाहिए इनके बारे में, तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ funpizzakitchen.com।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
7: भूख लगी, जोरों की भूख लगी.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
12: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

हाँ बताइए बताइए, वेयर्स द पार्टी टुनाइट? वीकेंड है भाई, आई एम वेरी श्योर कि सबके सबके कुछ ना कुछ प्लान्स तो होंगे ही होंगे। पार्टी के हो सकते हैं, चिल करने के हो सकते हैं, खुद अच्छा खाना बनाने के हो सकते हैं। हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हमें कॉल कीजिए और बताइए। और अगर कोई पार्टी प्लान नहीं है तो मेरे साथ कुछ बॉलीवुड ट्रिविया खेल लीजिए। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM। मैं हूं आपके साथ रात के 9 बजे तक। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूं, मैं कुछ सवाल करने वाली हूं और देखना चाहती हूं कि आपका बॉलीवुड जनरल नॉलेज कितना ज़्यादा है। इसका कोई गिव अवे नहीं है, ये बस फन के लिए, मज़े के लिए, वीकेंड एंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं हम। तो बताइए, मैं आपको दो टाइटल्स दूंगी और आपको बताने हैं कि ये कौन है, मतलब ये कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस है। ठीक है, तो पहला जो है कि धक धक गर्ल किसे कहा जाता है, और किंग खान। आई थिंक काफी इजी सवाल है, बट धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो आपको बताना है कि धक धक गर्ल और किंग खान कौन से एक्टर और एक्ट्रेस एक्ट्रेस को कहा जाता है। आपको कॉल करना है 972-235-5555 पे और मुझे बताना है।

हमने आपसे पूछा था कि धक धक गर्ल किसे कहते हैं, किस एक्ट्रेस को कहते हैं, और किंग खान कौन है बॉलीवुड के, और जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, सब ने ऑलमोस्ट सही जवाब ही दिया है। माधुरी दीक्षित जी और शाहरुख खान है इसके सही जवाब। और जैसा कि मैंने बताया, इस पे कोई गिव अवे तो नहीं है, लेकिन आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद द नॉलेज। और मैंने एक रैंडम क्वेश्चन भी बहुत सारे लिसनर्स से किया कि आपको याद है क्या कि ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी मूवी में साथ में आए थे, और बहुत सारे लोगों ने दो तीन मूवीज़ का नाम लिया, विच इज़ अंजाम, दिल तो पागल है, मतलब आइकॉनिक मूवीज़ है। और अंजाम मूवी को याद करते ही ना वो चने के खेत में गाना भी याद आ जाता है, और लोगों को लगता है कि डर ही सिर्फ ऐसी मूवी है शाहरुख खान की जिसमें उन्होंने निगेटिव या कैरेक्टर प्ले किया है, एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन नहीं, अंजाम इज ऑल्सो अ मूवी जहाँ पे शाहरुख खान ने निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है।

अगर आपको कोई फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो माई टाइम इक्विटी को रेफर कर सकते हैं, जो कि इट इज़ लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, और ये ऑफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट और भी बहुत सारे ढेर सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए mytimeequity.com या फिर कॉल कीजिए 4697021272 पे। और हम अब लेवल 2 ऑफ आवर बॉलीवुड ट्रिविया जो हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि AR रहमान का ओरिजिनल नाम क्या है? आपको बताना है मुझे कॉल करके एट 9722355555 पे। इस पे कोई गिव अवे नहीं है, ये सिर्फ हम मस्ती मजाक के लिए खेल रहे हैं।

दिल से रे, काफी खूबसूरत क्रिएशन है ये एआर रहमान की। और हमने आपसे बॉलीवुड ट्रिविया राउंड में पूछा था कि एआर रहमान का नाम पहले क्या था, चेंज होके क्या हुआ। तो जो उनका बर्थ जब उन्होंने लिया था तो उनका नाम था एएस दिलीप कुमार, जो कि बाद में बना एआर रहमान, विच इज अल्लाह रखा ए रहमान। उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया और उनके नाम का मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाई खुदा हिज गॉड। ब्यूटिफुल मीनिंग। और उन्होंने सूफिज्म वगैरह में भी काफ़ी स्पिरिचुअल लर्निंग्स ली और क्या कमाल के सॉन्ग्स वो लिखते हैं। अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ नेक्स्ट सवाल, विच इज़ कि बॉलीवुड की जो पहली टॉकी फिल्म थी उसका नाम क्या था, जिसने पूरे साइलेंट एरा को क्लोज किया था और सारी बातें बातें होने लगी इसके बाद बॉलीवुड में। तो कौन सी मूवी थी वो, अगर आपको याद है, पता है तो बताइए हमें 9722355555 पे। और इन्जॉय कीजिए अच्छे अच्छे सॉन्ग विद मी, यानी कि आरजे सिमी, और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 FM।

वैसे मेरी भी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो हैं जब कार चला रहे हों, रोड पे हों, तो सेफली ड्राइव करें, स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखें. लेकिन अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है या आपके जानने वालों के साथ, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा को रेफर कर सकते हैं आप, बिकॉज ही विल हेल्प यू फाइट योर केस. बिकॉज यू नो लॉट ऑफ टाइम्स इंश्योरेंस कंपनी से डील करना उतना इजी नहीं होता, प्रोसेस इजी नहीं होता डॉक्यूमेंटेशन का और कोर्ट वगैरह जाने का. तो आपको ओमर ख्वाजा और उनकी टीम इंश्योर करेंगे कि जब तक आप केस जीत नहीं जाते तब तक आपको पे नहीं करना है. ही दे विल मेक श्योर दैट यू आर वेल कॉम्पनसेटेड. और अगर आपको किसी भी तरीके का फ्री कंसल्टेशन लेना है फ्रॉम ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो आप कॉल कर सकते हैं 4693005046, या फिर आप विजिट करें attorneyomar.com फॉर मोर डिटेल्स.

खैर चाहती तो मैं भी यही हूँ कि थोड़ी देर और ठहर जाऊं, अपने लिसनर्स के साथ ढेर सारी बातें करूं, मौज करूं, मस्ती करूं, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरा जो ये शो था वीकेंड का, वो 6 to 9 PM वो अब ख़त्म हो रहा है। और ये पर्टिकुलर शो वॉज ब्रॉट टू यू बाई AG FinTechs, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म है US में। ये ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिविजुअल्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। ये ट्रस्टेड हैं, एफिशिएंट हैं और आपको फ्यूचर रेडी करते हैं बेसिकली। अगर आपको इनके बारे में या टैक्स रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इन्हें एट 4699429888, या फिर आप इनको विजिट भी कर सकते हैं। इनका वेबसाइट है agfintechs.com। और मेरे लिए तो अभी आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शो आता है मंडे टू थर्सडे 12:30 to 2:30 दोपहर को, विच इज़ आफ्टरनून अड्डा विद मी, यानी कि RJ सिमी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहें तो मेरा ID है गिमी सिमी, GIMMISIMI। और ओके गाइस, गुड नाइट, सायोनारा, सी यू ऑन मंडे, हैव अ गुड नाइट अगेन।

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: the leader, Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
9: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
10: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fun Asia.
11: I'm loving the music.
10: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
1: Hi I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio

0: Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: तेरी ये बारी सबकी तूने वाट लगवा दी लड़की है

We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तुम मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुकी थी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

संडे गपशप के तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है. वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ संडे गपशप ऑन 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं. एक और नया दिन, नया एपिसोड, नया शो और नई बातें आपके साथ. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. बस आपने करना क्या है, फ़ोन उठाएं, नंबर दबाएं और मुझे यहाँ तक वेल जस्ट रीच आउट टू मी एंड लेट मी नो व्हाट सॉन्ग यू वुड लाइक टू लिसन टू टुडे मॉर्निंग. 7 o'clock से लेकर 10 o'clock तक, 7 से 10 बजे ये शो आता है. ये शो May 31st, द लास्ट संडे, द लास्ट डे ऑफ दिस ब्यूटिफुल मंथ, 5th month. जी हाँ, वी आर गोइंग टू बी इन द 6th month स्टार्टिंग टमोरो. मंडे है तो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है. व्हाट अ ग्रेट एंडिंग टू दिस मंथ एंड टू दिस वीक. क्योंकि जो है मैं यहाँ पर हूँ आज सुबह सुबह आपके साथ, लाइक ऑलवेज एवरी संडे 7 से 10 मेरा और आपका साथ रहता है. 972-235-5555 पर कॉल करना मत भूलिएगा. शो का आगाज़ करते हैं इस बहुत ही अच्छे भजन के साथ जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और म्यूज़िक दिया है नौशाद साहब ने. बैजू बावरा.

0: लो
1: वह दर्शन दीक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन के दर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ बड़ी मनोहर मोहन के दर हरिओ

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। हम ये भजन सुन रहे थे बैजू बावरा फिल्म का, और इसको लाइक आई मेंशन्ड गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। बहुत ही उनकी अच्छी सुरीली आवाज़, अनडाउटेडली द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर्स ऑफ द हिंदी मूवी इंडस्ट्री। 1952 की ये फिल्म, और इसको विजय भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ, द भट्ट फैमिली हैज़ बिन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जो है उनके आगे जेनरेशन है, और इस फिल्म बैजू बावरा को म्यूज़िक देने वाले नौशाद, जिन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बिग बैनर फिल्मों को म्यूज़िक दिया है, रतन वॉज वन ऑफ दैम, अनमोल घड़ी, शाहजहां, दीदार, एट्सेट्रा। सो ये सब जो है नौशाद साहब की फिल्में जिनमें उन्होंने म्यूज़िक दिया, एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड एंड पद्म भूषण इनको मिले हैं दोनों बैक टू बैक 1981 एंड 19 वेल नॉट बैक टू बैक बट इन स्पैन ऑफ अबाउट 10 to 11 ईयर्स। और ये जो है जाने माने ज़बरदस्त जो है म्यूज़िक डायरेक्टर रहे। ताजमहल जो एक फिल्म आई थी 2005 में, जी हाँ, इन दिस सेंचुरी जो एक फिल्म आई थी, फेयरली न्यूअर फिल्म, और तब नौशाद साहब 86 ईयर्स के थे, एंड तब तक इन्होंने इतना अच्छा काम किया। ताजमहल फिल्म जो 2005 में आई थी उसको भी म्यूज़िक इन्होंने ही दिया था। और फिर आपको शायद पता होगा, याद होगा कि जो अकबर एक टीवी शो आया करता था उसका भी जो है बैकग्राउंड स्कोर नौशाद साहब ने ही दिया था, एंड काफ़ी अच्छा वेरीड काम किया। बहुत ही इन्होंने जो है इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, एंड ओवरऑल ये सब जो हैं दिग्गज ही हैं इंडस्ट्री के। और इसमें बहुत इनका जो है क्लासिकल म्यूज़िक और राग जो है फोक म्यूज़िक उनकी तरफ जो है झुकाव थोड़ा ज़्यादा था, तो नौशाद साहब का बड़ा क्लासिक म्यूज़िक हुआ करता था। और इसमें जो है स्पेशली इन दिस फिल्म इन्होंने बहुत सारे मैसेस को अपील करता हुआ म्यूज़िक बनाया था, और इसी फिल्म के लिए इनको अपना सबसे पहला जो है म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। एक आइकॉनिक फिल्म जो है मुगले आज़म, जिसमें बड़े गुलाम अली खान साहब का काम देखा था हमने, वो उनसे इंस्पायर होके नौशाद साहब ने बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड अपना काम किया। तो ये हो गई बात बैजू बावरा और नौशाद साहब की। 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर द मंथ ऑफ मे। वी आर गोइंग टू बी इन द सिक्स मंथ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ईयर फ्रॉम टुमारो। जून में जो है 30 डेज होते हैं, और इन 30 डेज में गर्मी बहुत होती है। ऑब्वियसली वी आर ऑफिशली इन द समर मंथ्स फॉर दिस ईयर 2026। जून इज़ कम्प्लीटली हॉट, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर भी काफ़ी गर्म होता है। अब अक्टूबर में जाके थोड़ा सा रेस्पिट मिलेगा, बट दीज अपकमिंग मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी हॉट, ड्राई। जी हाँ, रेन्स तो अब शायद इतनी नहीं होंगी जितना होना था। बारिशें वो सब हो गई, जितना भी हमारे गार्डन्स को, लॉन्स को पानी नेचुरली मिलना था, आई थिंक वो अब हो गया है इस सीज़न के लिए, इस साल के लिए। अब जो है सबके स्प्रिंकलर्स भी ऑन होंगे और वाटर होज से खुद ही पानी देना पड़ेगा। 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। ये अगला सॉन्ग।
1: बात के सच्चे जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

वैसे सवाल तो बहुत अच्छे पूछे हैं लता जी ने कि डिफरेंट जब सिचुएशंस होंगी, बेबस हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे, या जब कुछ अटैक होगा कंट्री पर, या कुछ लुटेरे आ जाएंगे, तो फिर तुम क्या करोगे? तो ये सॉन्ग फिल्म दो आंखें 12 हाथ का हम सुन रहे थे. इसमें लता जी ने ये गीत गाया. 1957 की ये फिल्म इतनी सुपरहिट फिल्म थी, और इसमें जो है एक साइकोलॉजी रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया था पॉपुलर, वेल ही वाजंट सो पॉपुलर, एक साइकोलॉजिस्ट थे और पोलिश, उनका पोलिश थे वो अपने बाय बर्थ, उनकी जो है नेशनैलिटी, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, एंड उसी एक्सपेरिमेंट पर ये फिल्म बेस्ड हुई थी. ओपन प्रिजन था इस एक्सपेरिमेंट का जो पूरा एक जो बैकड्रॉप था, और उस में यही था कि ऑनर सिस्टम के जो अंडर हैं लोग, फिर किस तरह से बिहेव करते हैं. अगर उनको पता है कि वो गलत हैं, अगर उनको पता है कि उन्होंने क्राइम किया है, चोरी की है, या जो भी थेफ्ट किया है, और फिर उनको जो है सुपरवाइज्ड एक बंद आई गेस जेल में ना रखते हुए, अगर उनको ओपन मौका दिया जाए कि वो अपना अपने आप को किस तरह से सुधार सकते हैं, या उनकी जो कॉन्शियंस है उसको अगर जागरूक करना हो, तो फिर वो जो प्रोसेस है वो कैसे जाता है. सो दिस वॉज कंडक्टेड बाय अ पोलिश इंजीनियर, एंड ही ऑल्सो वॉज अ फॉलोअर एंड अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधीज प्रिंसिपल्स. सो ये फिल्म उसी सॉर्ट ऑफ एक साइकोलॉजी पर बनी, एंड आगे चलकर ये सुपरहिट फिल्म हुई. इसको सिल्वर बेयर का अवार्ड भी मिला जर्मनी में, जो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है. एंड जो है ये इसी फिल्म का गाना है, दो ए मालिक तेरे बंदे हम. एंड ये कुछ स्कूल्स जो थे नेबरिंग सिटीज़ में, जो पाकिस्तान का पोर्शन जो इंडिया से टच होता है, सुना है मैंने कि वहाँ पर ये स्कूल में बच्चों को ये जो है एक एंथम के तौर पर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ए मालिक तेरे बंदे हम. सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस फिल्म, ओल्ड फिल्म 1957. सोचिए ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए इस फिल्म को, लेकिन इस फिल्म के थ्रू जो इंस्पिरेशन आज भी मिलती है लोगों को, इट इज़ जस्ट इनवैल्यूएबल. थैंक यू सो मच फॉर योर फ़ोन कॉल्स. 972-235-5555. और अब ये अगला सॉन्ग.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
3: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Shaadi Byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: टैक्सेस आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेसफुल विद CPA शालिनी कोडियाल ऑन योर साइड। यू फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस व्हाइल शी हैंडल्स द प्लानिंग टू मिटिगेट योर टैक्स लायबिलिटी। शी इज ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, एंश्योरिंग योर बिजनेस stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

Welcome back. Thank you so much. You are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ आरजे एक रूप. आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से. एंड जो है आप जुड़े हुए हैं इस शो के साथ. और शो आता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक. एंड लेकर आती हूँ इसको मैं सिर्फ और सिर्फ संडे को आता है मेरा ये शो. और संडे को ही मैं आपके साथ यहाँ पर होती हूँ. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. और आज की जो डेट है वो है मई 31st. एंड मौसम में जो तब्दीली है वो देख सकते हैं हम, फील कर रहे हैं इसको. जो है गर्म मौसम हो रहा है अब तो, 90s तो अब आम बात होगी. आज जो है वर्ल्ड नो टबैको डे के तौर पर इसको रिकग्नाइज किया जाता है. टबैको विच इज़ विच कैन बिकम क्वाइट फेटल, द यूसेज ऑफ लॉन्ग टर्म टबैको. एंड इसीलिए ये रिकग्निशन है आज के डे के लिए. इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स, इसके जो बैड इम्पैक्ट है, और जस्ट मेकिंग एवरीबडी अवेयर एंड रिकग्नाइजिंग द ट्रूथ बिहाइंड कंज्यूमिंग टबैको. और ये जो है इसमें आपने अगर लंदन गए हो, नहीं भी गए तो भी ये एक बड़ा प्रोमिनेंट लैंडमार्क है जो लंदन का, बिग बेन, विच इज़ अ ह्यूज क्लॉक टावर. वेल नोन पॉपुलर लैंडमार्क है वहाँ पर. एंड दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है. तो बिग बेन जो है सबसे पहले जो उसकी रिंग हुई थी, टावर, क्लॉक टावर, वो आज ही के दिन हुई थी, मई 31st, बैक इन द ईयर 1859. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे. इट इज़ रिलेटेड टू दिस आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ लंदन, वेयर द क्लॉक टावर रैंग द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन टुडे. टुडे इज़ द डेट ऑन ऑन मई 31st, बैक इन द ईयर 1859. सो इट इज़ अ बिग डील, समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग सिग्निफिकेंट दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री. और अगर आप साइनफील्ड जो टेलीविजन सीरीज़ है, अगर आपने वो फॉलो की, आपने वॉच किया, नहीं भी किया तो भी ये कॉमन नॉलेज है. साइनफील्ड एक टीवी एनबीसी पर शो आता था, उसके बहुत लंबा सीज़न चला था, बहुत सारे एपिसोड्स थे. उसका जो सबसे पहला एपिसोड है वो 1990 में एयर हुआ था. एंड दैट वॉज टुडे मई 31st एज वेल. सो फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ साइनफील्ड वॉज एयर टुडे मई 31st इन द ईयर 1990. सो ये भी एक प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट बात रही है टीवी एनबीसी के लिए. एक बड़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव एंड सक्सेसफुल एक्ट्रेस हुआ करती थी हॉलीवुड की, ब्रूक शील्ड्स. आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर फॉलोड हर और इफ़ यू हैव सीन एनी ऑफ हर मूवीज़. शी वॉज अ स्टार, यूज़ टू बी वेरी पॉपुलर, ब्रूक शील्ड्स. आज उनका जन्मदिन है, मई 31st. एंड ऑल्सो देर आर अदर हॉलीवुड एक्टर्स जिनका आज जन्मदिन होता है. वेल, ब्रूक शील्ड्स देन लेटर ऑल्सो बिकेम एन ऑथर. एंड जो है एक्विटी एसोसिएशन है जो एक्टर्स की, उनकी ये अभी प्रेजिडेंट हैं. एंड शी इज़ नोन फॉर हर फिल्म्स लाइक फ्रेडी बेबी, द ब्लू लगून. और ये जो है कैल्विन क्लाइन की जीन्स का जो एड आती थी, जो कैंपेन हुआ करता था, उसकी ये मॉडल भी थी. सो शी मेड अ बिग मार्क फॉर हर सेल्फ. और फिर उसके बाद जब ये टेलीविजन का करियर इन्होंने शुरू किया तो सडनली सूजन बिकेम पॉपुलर. सडनली सूजन इज़ द नेम ऑफ द टेलीविजन शो. एंड ऑल्सो बिकेम इन टू द ब्रॉडवे शो. तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है हुनर दिखाया, टैलेंट दिखाया, ब्रूक शील्ड्स. एंड क्वाइट वर्सटाइल एक्ट्रेस. एंडलेस लव भी एक इनकी फिल्म आई थी. इनका आई रिमेम्बर मेरे पास, मेरे रूम में, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मेरे रूम में एक इनका पोस्टर लगा
लगाया था मैंने. एंड आई थॉट शी वॉज अ वेरी गुड लुकिंग एक्ट्रेस. तो एनी वे होता है ना, जब आप टीनेजर होते हो, यू स्टार्ट टू फॉलो द पॉप कल्चर, यू आर सो मच इन टू मूवीज एंड द सॉन्ग्स एंड वट एवर इज गोइंग ऑन ग्लोबली. तो एक इनका होता था ब्रूक शील्ड्स का, एक टॉम क्रूज, ऑब्वियसली एवरीबडी हैड अ क्रश ऑन टॉम क्रूज, एक उनका पोस्टर होता था, एक वनीला आइस का पोस्टर. सो एनी वे आई रिमेंबर इनका ब्रूक शील्ड्स का तो मेरे पास बहुत ही सुंदर पोस्टर हुआ करता था. सो टुडे इज हर बर्थडे May 31st. एंड आज इनफैक्ट क्लिंट ईस्टवुड का भी बर्थडे है. He was born in 1930 and jo hai Colin Farrell was also born today back in the year 1976. So several birthdays, happy birthday to all these Hollywood personalities. May 31st ab hum badhenge Azmina ji ki request par, which is this one.

मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया था सिकंदर का, विनोद खन्ना ने रोल प्ले किया था विशाल आनंद का, और राखी जी ने रोल प्ले किया था कामना। इसमें जोरा बाई यानी कि रेखा जी भी थी, रंजीत, अमजद खान, निरूपा रॉय एंड सो मैनी अदर कैरेक्टर आर्टिस्ट। इवन कादर खान की भी एक छोटी सी परफॉर्म अपियरेंस थी, कैमियो अपियरेंस थी। एंड देन श्री राम लागू जो जिन्होंने अबाउट मोर देन 250 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है, तो आप इनका जो है दायरा सोच लीजिए कितना बड़ा होगा। सच एन एस्टैब्लिश्ड एंड वेल रिस्पेक्टेड एक्टर श्री राम लागू, वो भी इस फिल्म में नज़र आए थे। अजमीना, ये आपकी रिक्वेस्ट पर हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, दैट केम आउट इन 1978, बिकेम अ पॉपुलर फिल्म। इसमें जो है म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और अगर इसकी कमर्शियल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 10 मिलियन में बनी थी ये फिल्म, एंड 269 अबाउट 270 मिलियन जो है इस फिल्म ने कमाया था। सो ऑब्वियसली अ सुपर हिट फिल्म। अजमीना कहती हैं कि ये सॉन्ग उनको बहुत पसंद है, प्योरली बिकॉज ऑफ द लिरिक्स एंड सच अ ब्यूटिफुल मीनिंग ऑफ द लिरिक्स ऑफ दिस मूवी, ऑफ दिस सॉन्ग। अच्छा, अगली रिक्वेस्ट आई हुई है अभी, एक और आइकॉनिक फिल्म है, टेकिंग अस बैक इनटू द ब्लैक एंड वाइट एरा, जहाँ पर राज कपूर साहब, मुकेश साहब की जो है जोड़ी कलेबोरेशन बहुत पॉपुलर थी। शैलेंद्र वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर टीम। फिल्म का नाम है जागते रहो, ये वाला सॉन्ग।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: जागते रहो यानी कि ईदर वेल ऑफ कोर्स स्टे अवेक, यहाँ इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अलर्ट रहो, अपने आईज एंड ईयर्स ओपन रखो, क्योंकि ये गांव से आते हैं एक पेजेंट दैट मूव्स टू द सिटी इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, बेटर इनकम एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो ये वही है कि अलर्ट रहो, शहर में कुछ भी हो सकता है, लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं एंड अपने मतलब से मतलब रखते हैं, तो इसीलिए ये इस फिल्म का टाइटल जो है जागते रहो दिया। और ये फिल्म पॉपुलर हुई, आइकॉनिक फिल्म बन गई एंड इसमें सलिल चौधरी का म्यूज़िक, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच क्या, मुकेश साहब ने इस गीत को गाया और बहुत पॉपुलर हुआ, हमारे लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की। 1956 की ये फिल्म थी एंड उसी टाइम जो है राज कपूर साहब, सोचिए बैक इन द लेट 40s, 50s एंड इवन 60s में इतनी पॉपुलर फिल्मों में काम कर रहे थे, इतनी अच्छी फिल्में बना रहे थे, ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे। एंड इनफैक्ट इस फिल्म में ना नरगिस जी भी हैं, शी कम्स ओनली इन द लास्ट सीन, तो छोटी सी परफॉर्मेंस है, छोटा सा कैमियो है, वो कैमियो ही है, तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस एंड फिल्म जो है बहुत पसंद की गई। मैं स्पेशली थैंक यू बोलती हूँ हमारे सारे लिसनर्स का, इतने अच्छे सॉन्ग्स और इतनी अच्छी फिल्मों के बारे में आप याद करवा देते हैं एंड दीज songs, these films are just so evergreen. हर एरा में, हर दौर में ये फिल्में जो हैं रिलेट आप इनके साथ कर सकते हो। दिस अनदर वन, अ क्लासिक फिल्म।

0: हिंदी मूवी इंडस्ट्री में कुछ हैंडफुल फिल्में ही बनी हैं जिनमें ट्विन्स का जो है कॉन्सेप्ट है, या इन द बैकड्रॉप वो इन द फोरग्राउंड आल्सो जो लीड रोल है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो एक्ट्रेस हो, मेल या फीमेल हुएवर, उनका जो है ट्विन रोल हो फिल्म में. रीसेंट टाइम्स में, आई गेस रीसेंट ही कहूँगी, 1997 में फिल्म आई थी जुड़वा, जिसमें सलमान खान का जो है डबल रोल, ट्विन रोल था. फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो शेक्सपियर की मास्टर क्लास कॉमेडी है, उस पर बेस्ड हिंदी फिल्म बनी थी. अगेन उसमें संजीव कुमार ही थे. उस फिल्म का नाम अंगूर. आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट मास्टरपीस. वैसी फिल्म मूवी बॉलीवुड में नहीं बनी है. इट वॉज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉमेडी ऑफ एरर्स, शेक्सपियर की जो नॉवल थी, एंड ये आगे चलकर अंगूर के रूप में हमने देखी. व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म. एंड देन उससे पहले आई थी, वेल उसके बाद आई थी चालबाज, जिसमें श्रीदेवी को हमने डुअल रोल में, ट्विन्स के डबल रोल में देखा था. एंड वन वॉज सो टिमिड, वन वॉज सो सबमिसिव, द अदर वन वॉज जस्ट लिटल स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट एंड फायर क्रैकर, आई गेस कह सकते हैं कि वो सबको जो है किस कोई उनको छेड़ नहीं सकता था, कोई उनको टेकन राइड पे नहीं लेके जा सकता था, आई गेस. तो उसमें बिल्कुल ही दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे. एंड सिमिलरली सीता और गीता, जिसका हम ये सॉन्ग सुन रहे हैं, इसमें भी हेमा मालिनी जी का डबल रोल था. एंड शी डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब. वन वॉज सो डोसाइल और एक बिल्कुल फियरलेस. ये जो गीत जो गा रही हैं, गाना जो गा रही हैं, शी इज़ द फियरलेस वन. और इनका एक बड़ा फनी सा डायलॉग है कि मैं तो मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती हूँ. सो दीज लिटल स्निपेट्स. और नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी, वो जो पंखे वाला पुलिस स्टेशन में जो सीन है, और इतने अच्छे सीन्स, इतनी अच्छी एक्टिंग. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द फिल्म्स दैट हैड द ट्विन रोल गोइंग ऑन, डबल रोल. अब शायद ऐसी आइकॉनिक फिल्में बननी मुश्किल हैं कि इतनी जो यादगार बन जाती हैं, जिनके सॉन्ग्स भी अच्छे होते हैं, जिनकी स्टोरी भी इतनी अच्छी होती है, सब कुछ सीता और गीता का इतना अच्छा था. इससे पहले राम और श्याम भी बनी थी, जिसमें दिलीप कुमार साहब का रोल था. अगेन वन वॉज सो डोसाइल फियरफुल, द अदर वन वॉज सो फियरलेस एंड बिंदास. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है. सो अच्छी फिल्में बनी इंडस्ट्री में. एंड ट्विन का जो ये स्टोरी लाइन है, ये सक्सेसफुल फिल्में ही रहीं.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville. Dallas ka sabse bada desi grocery. स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे, नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
10: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
1: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
10: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
1: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
10: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
1: नंबर बोल जल्दी।
10: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
1: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
1: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: चिकन बनाना,
14: चिकन बनाना
1: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
16: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फैनेजिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से. शो का एक घंटा हो चुका है. स्टूडियो की क्लॉक जो है, स्टूडियो की जो घड़ी है, उसमें टाइम अभी 8:06 हो रहे हैं एंड आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं. एंड थैंक यू बोलूँगी आप सबका. अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स. एंड आप जो है, संडे को मेरी आपसे बात होती है, मुलाकात होती है यहाँ पर. वल मुलाकात अब टेक्निकली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी फ़ोन के थ्रू, बातों के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू हो जाती है. 7 बजे से 10 बजे तक ये 3 घंटे का शो संडे गपशप. टुडे इज़ द डेट May 31st, द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ. एंड टमोरो वी आर गोइंग टू बी लिटरली इन द मिडल ऑफ द ईयर. 6th month है जून, और जून जो है डेफिनेटली छुट्टियाँ होती हैं स्कूल्स में, समर वेकेशन हो जाती है, और बस गुड टाइम्स, ट्रैवल टाइम्स, पार्टी टाइम्स, सबको मिलना, सोशलाइजिंग बढ़ जाती है. एंड जस्ट आई गेस एवरीबडी इज़ इन द समर फीवर, एज इन समर स्पिरिट. मेरे पास अब 2 घंटे जो बचे हैं, इसमें मैं हमारे एडवर्टाइजर्स के बारे में बताऊंगी जो लाइव अनाउंसमेंट्स हमें करनी होती हैं. एंड फिर एक गिव अवे भी है जो मैं 9 o'clock की ब्रेक के बाद यूजुअली लेकर आती हूँ. और सवाल जो है कभी इंटरेस्टिंग होता है, कभी बहुत आसान होता है, कभी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है. इट जस्ट मेक्स इट इंटरेस्टिंग बिकॉज फिर जो है काफ़ी हमारे लिसनर्स हैं, या इवन मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है. सो थैंक यू आप सबका. इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनकी आप रिक्वेस्ट करते हो. एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी फिल्म्स जिनमें डबल रोल या ट्विन्स का रोल है. ब्रेक में हमारे एक लिसनर है, उन्होंने बताया कि आप 2 कलियां का मेंशन आपने नहीं किया. जी हाँ, उसमें नीतू सिंह जो चाइल्ड एक्टर थी, उनका डबल रोल था गंगा एंड जमुना. वो बच्चे होते हैं, बिस्वजीत एंड माला सिन्हा का जो रोल प्ले किया था पेरेंट्स का, उनके बच्चे होती हैं, बच्चियाँ होती हैं ये दोनों, या एक नीतू सिंह का कैरेक्टर, नीतू सिंह ने उस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था. सो यस, 2 कलियां वाज अनदर सुपरहिट फिल्म दैट हैड द ट्विन रोल इन इट फॉर द लिटिल गर्ल. चलिए अब हमारे लिसनर हैं जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है, सुनते हैं ये आइकॉनिक गाना.

0: का चांद.
1: Another iconic song in the voice of Mohammed Rafi Sahab, film ka naam Chaudhvi Ka Chand aur gaane ka naam bhi Chaudhvi Ka Chand. Is mein jo hai Rafi Sahab ke music and Shakil Badayuni ke lyrics the. Wahida Rehman itni sundar lagi thi is film mein, and is film ke jo kabhi interesting facts padho to bade acche mazedar hain. किस तरह से फिल्म बनी, किस तरह से ये एक्टर्स ऑन बोर्ड आए, किस तरह से ऑफ़र मिले इनको इन रोल्स के लिए, एंड ऑफ़ कोर्स द प्रोडक्ट दैट केम आउट इन द फॉर्म ऑफ चौधवी का चांद इतनी सुपरहिट फिल्म बन गई. सो थैंक यू अलादीन जी, आपने इस गीत की रिक्वेस्ट की. अब सतीश साहब जो हैं ये दो सॉन्ग्स की वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि एक सॉन्ग पिछले हफ्ते का बिकॉज आप आई नहीं थी और एक अभी इस हफ्ते का, तो ये दो सॉन्ग्स की उन्होंने रिक्वेस्ट की है. सो हियर यू गो. पहला जो मैं सॉन्ग लगाऊंगी झुक गया आसमां, एंड सेकंड वाला है वो कोई और होगा, फिल्म का नाम है, एंड चलिए सुनते हैं ये वाला सॉन्ग.

हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की, ये भी एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज़ में। इस फिल्म का नाम अंधा कानून, साउंड्स लाइक सम वायलेंट फिल्म, क्योंकि ये एक ऐसा दौर आया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी हिस्ट्री में आई गेस, जहाँ पर काफ़ी वायलेंट फिल्में बनने लग गई थी 80s में, और फिर उसके बाद जब 90s का दौर शुरू हुआ तो अगेन रोमांटिक लाइट हार्टेड फन फैमिली फिल्म्स का दौर शुरू हो गया। सो एनीवे दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड अंधा कानून, और इस को गाया था, इस सॉन्ग को गाया था किशोर कुमार साहब ने। हमारी एक लिसनर हैं, उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, एंड थैंक यू अमिता जी, आई फील सो हम्बल्ड, आई फील सो गुड आपके वार्मथ एंड अफेक्शन के लिए, शुक्रिया कहती हूँ आपका। एंड अमिता जी शेयर कर रही थी कि ये वाला जो वीकेंड है वो दिस टुडे मई 30th वाला जो टाइम है बैक इन द ईयर 1971 इज़ व्हेन अमिता जी स्टेप्ड इन टू ऑन टू दिस ब्यूटिफुल लैंड, अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करने आई थी। आज उनको 55 ईयर्स हो गए हैं इस कंट्री में, एंड शी इज़ हैड सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वर्किंग हियर, लिविंग हियर, एंड वो बस अपना जो है उस टाइम का जो मोमेंट है उसको याद कर रही थी, शेयर कर रही थी मेरे साथ। And she has been so thankful and grateful to God. 55 years ago, she stepped into she came and moved to Baltimore first, and then life brought them here to down south in Dallas. So, Amita ji, thank you for sharing this about you, about a little personal anecdote. आपने इस song की request की है. छोटा सा song है. Hopefully, break तक चलता रहे ये song. Film. का नाम है कागज के फूल, बोल है वक्त ने किया क्या, हंसी सितम।

वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका. थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया. आप जुड़े हुए हैं इस शो के साथ. संडे गपशप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो संडे को आता है सुबह. लेकर आती हूँ इसको मैं एक रूप. और अब मैं आपको अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट प्ले करने से पहले, सुनवाने से पहले, देसी मंडी के बारे में बता देती हूँ कि अगर आप देसी फूड लवर हैं एंड यू आर अ स्मार्ट शॉपर, देन देसी मंडी इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो. दिस वन इज़ लोकेटेड इन लुइसविल, विच दे बोस्ट अबाउट एज बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स हियर इन नॉर्थ टेक्सस. दे डू हैव फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज. हलाल मीट भी मिल जाएगा वहाँ पर, स्पाइसेस हैं, स्वीट्स हैं, स्नैक्स हैं, और फिर डिलिशियस हॉट फूड भी वो इन हाउस बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट में. ये सब आपको मिल जाएगा देसी मंडी. वेदर यू आर शॉपिंग फॉर डेली एसेंशल्स और प्लानिंग अ फैमिली फीस, यू विल फाइंड क्वालिटी वैरायटी एंड अनबीटेबल देसी फ्लेवर वेटिंग फॉर यू. तो आप बस अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर जाएं एंड फटाफट से देसी मंडी में जाकर आप अपनी शॉपिंग कर लीजिए. वहाँ पर इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप. आप जाएंगे, शॉपिंग भी हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा, और अच्छा एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा, एम्बियंस भी अच्छा है. सो ऑल इन वन इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विजिट. इट इज़ अ ग्रोसरी स्टोर. तो आप अपना जो है शॉपिंग अपनी इंजॉय कीजिए एंड ब्रिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड एंड मच मोर फ्रॉम देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल. पिछले संडे मैं यहाँ पर नहीं आ सकी थी 7 to 10 शो करने. कुछ हमारे लिसनर्स, 6-7 लिसनर्स हैं जिन्होंने पूछा, एंड प्यार से आप पूछते हैं एंड कंसर्न शो करते हैं, सो दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू. मेरा गला बहुत ख़राब था पिछले संडे. आई कुड नॉट टॉक सो मच ऑन एट ऑल, सो मच नॉट जस्ट ऑन द माइक. घर में तो माइक नहीं होता, लेकिन आवाज़, आई गेस जिसको कहते हैं ना, गला बैठा हुआ था. तो अभी थोड़ा सा, कहीं कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा बचा हुआ है. पूरा अभी 100% नहीं ठीक हुआ, लेकिन इट इज़ मैनेजेबल. इट इज़ इन द लास्ट स्टेजेस, यू नो हाउ इट स्टार्ट्स टू गेट बेटर. तो वो जो स्टेज होती है कि थोड़ा ठीक होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी कहीं ना कहीं खराश होती है. सो दैट इज़ द स्टेज वेयर आई एम राइट नाउ. बट आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया, आपके कंसर्न्स एंड गुड विशेस के लिए शुक्रिया. हमारी लिसनर है, उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, रेट्रो एरा, भरत भूषण साहब की एरा. नूतन जी हैं इस फिल्म में.

आई थिंक ये फिल्म का नाम है शबाब, और ऑफ कोर्स इसमें नूतन जी हैं एंड भारत भूषण, जो अपने टाइम पर इतने पॉपुलर एक्टर होते थे, और इनको इतनी सारी फिल्मों में जो है इन्होंने काम किया. हेमंत कुमार, वेरी पॉपुलर सिंगर, जिन्होंने इस गीत को गाया, चंदन का पलना रेशम की डोरी. देर इज़ इन फैक्ट अ फीमेल वर्जन ऑल्सो ऑफ दिस सॉन्ग दैट हैज़ बिन सॉन्ग बाय लता जी, पर हमारी लिसनर ने स्पेशली बोला कि नहीं, उनको मेल वर्जन वाला जो सॉन्ग है वो ही सुनना है. स्पीकिंग ऑफ हेमंत कुमार, एक और सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, एंड वो वाला सॉन्ग भी हेमंत कुमार साहब ने ही गाया है देवानंद जी के लिए, अगेन ऑन वहीदा रहमान.

मैंने ये फिल्म नहीं देखी, बात एक रात की। ये गीत बहुत पॉपुलर है, ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स। इतना अच्छा सॉन्ग है, म्यूजिक इतना अच्छा है एस डी बर्मन साहब का, तो ये सॉन्ग डेफिनेटली सुना है। सो मूवी में किस मोड़ पर ये सॉन्ग आता है मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट लुकिंग एट द वीडियो इट लुक्स अ लिटल फनी, क्योंकि वो सो रही हैं, शी इज़ ऑन द बेड, शी इज स्लीपिंग, एंड देन ये गाना गाते हैं पीछे से एक्टर उनके पीछे खड़े होके बेड के पीछे हेड रेस्ट पे। सो फर्स्टली वो ही थोड़ा सा ऑड लगता है कि कान में आपके कोई गाना गा रहा है, एंड देन सडनली शी वेक्स अप, देन देवानंद साहब छुप जाते हैं, एंड इन द होल सॉन्ग ही इज हाइडिंग, ही डजन शो हिमसेल्फ टू हर। तो वो ढूंढ रही हैं, एंड अगर आप सोचिए ये रियलिटी में आपके साथ हो रहा है कि आपके घर में कोई गाना गा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, एंड इन द एंड यू ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग विद देम, सो ये मैजिक, ये मसाला, ये थोड़ा सा अनरियल बातें, थोड़ी ऑफ द टॉप बातें जो हैं, ये सिर्फ हिंदी मूवीज़ में ही अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तभी ये सारी चीज़ें इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, एंड दे स्टिक टू अस, दे आर अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, दे आर अ पार्ट ऑफ अस, दे आर इन अस। लेकिन सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि आप सो रहे हो, आपके घर में कोई गाना गा रहा है, एंड यू कैन यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वो कौन है, और इतना सुरीला गाना, इतना अच्छा म्यूजिक, सो रिलेटेड टू योर पर्सनल रियल लाइफ, एंड तो थोड़ा आपको हंसी आएगी, थोड़ा ऑड लगेगा, थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन मूवी है, मूवी में सब कुछ चलता है, इसी को कहते हैं हिंदी मूवी का मसाला। बात एक रात की जो आई थी 1962 में, एक लॉयर का रोल प्ले करते हैं देवानंद साहब, एंड वहीदा जी जो हैं वो एक गिल्टी, एक क्रिमिनल हैं सपोजिटली, दे डोंट नो इफ शी इज़ गिल्टी और नॉट, सो दैट इज़ द स्टोरी, दे हैव टू फाइंड आउट इफ शी रियली डिड द क्राइम और नॉट, इफ शी रियली इज़ गिल्टी और नॉट। सो एनी वे थैंक यू हमारी अमिता जी, इतना अच्छा सॉन्ग आपने इसकी रिक्वेस्ट की। अभी एक और सॉन्ग है बहुत अच्छा, अगेन ब्लैक एंड वाइट फिल्म, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी की आवाज़ में ये वाला सॉन्ग।

सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, वो इस गीत में, इस फिल्म में इतना अच्छा सोशल मैसेज दिया था. एंड राज कपूर साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स केम विद सम सोशल मैसेज, सम सिविक सेंस, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे हैव फॉर द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी. तो ये वाली जो है फिल्म, इसका नाम बूट पॉलिश, लाइक आई सेड राज कपूर साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था. ही बिलीव्ड इन द स्टोरी, ही बिलीव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड ही लव्ड द स्टोरी एंड दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू प्रोड्यूस इट. इसके डायरेक्टर प्रकाश अरोड़ा, लाइक आई सेड बूट पॉलिश द वन दैट केम आउट इन 1954, और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था. इतनी अच्छी फिल्म, डेविड इसमें है, द वेरी पॉपुलर एक्टर डेविड साहब, वो इस फिल्म में ये सॉन्ग गा रहे हैं. एंड ये बच्चों को एक मैसेज दिया जा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम, और किस तरह से मेहनत करके अपना कमाओ इंस्टेड ऑफ बेगिंग एंड बिकमिंग अ थीव. तो ये जो है उस टाइम की सोसाइटी को इतना अच्छा मैसेज दिया ये सॉन्ग. नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मीनिंग देर इज़ अ होल बिग लाइफ इन योर हैंड्स, सो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अच्छा जीवन जियो और दुनिया के लिए कुछ अच्छा बड़ा करके दिखाओ. सो ये फिल्म में नाज, बेबी नाज हैं, और उन्होंने बेलू का रोल प्ले किया था, रतन कुमार, डेविड साहब ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा सा उसमें रोल जो है राज कपूर साहब भी नज़र आए थे खुद. सो ये हमारे लिसनर अलादीन जी की ही रिक्वेस्ट पर हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. ओमर ख्वाजा हमारी कम्युनिटी में है एंड वो अटॉर्नी है. इफ़ देर इज़ अ पर्सनल इंजरी दैट एनी स्ट्रेसफुल एंड देयरफॉर यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ मेकिंग फोन कॉल्स, कलेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग द witnesses and the proofs, etc. And the best thing is you don't pay the attorney Omar Khwaja until you win the case. There is a free consultation that you can arrange with Omar Khwaja, and the phone number to get in touch with him is 469-300-5046, or you can visit his website which is attorneyomar.com. Hamari listener ye wala song sunna chahti hain लता जी की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और वारिस जो पुरानी वाली वारिस है उसका सॉन्ग, हेमा जी एंड जीतू जी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
6: कौन सा?
5: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
6: अरे सारे तो सेम है।
5: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
6: ओह हाँ, ये तो अलग है।
7: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 4697343338 4697343338। माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो।
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
15: अरे यार, डालस में पंजाब?
16: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म।
17: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
18: क्या मतलब?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
18: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
20: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio and this is RJ Ikrup welcoming you all once again. Show 3 ghante ka hota hai and now is the third and the last hour of the show. 9 to 10 abhi khair 9:07 ho rahe hain स्टूडियो की क्लॉक में. एंड ये जो इंस्ट्रूमेंटल पीस आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट, ये रास्पुटिन है. 1978 में ये वाला सॉन्ग रिलीज हुआ था एंड इवन टू दिस डे इट साउंड्स सो फ्रेश लाइक अ फ्लावर. ये बोनी एम का सॉन्ग है, जर्मन जो ये पॉप बैंड पॉपुलर, इनका ग्लोबल फेम इतना ज़बरदस्त रहा, उन्होंने ही ये वाला सॉन्ग रिलीज़ किया था बोनी एम ने. एंड रास्पुटिन दैट केम आउट इन 1978 एंड आई जस्ट लाइक टू प्ले इट एज द सॉन्ग राइट आफ्टर द ब्रेक व्हेन वी रिज्यूम नॉर्मली. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ पैपी, इट इज़ हाई स्पिरिटेड, इट ब्रिंग्स इट अपलिफ्ट्स द मूड एंड म्यूजिक तो ऑफकोर्स इतना अच्छा है ही इस सॉन्ग का. दिस वन इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वर्जन ऑफ द सॉन्ग. कभी हाँ कभी ना में एक सॉन्ग था वो इसी से इंस्पायर्ड था एंड इस सॉन्ग ने कितने ही म्यूजिशंस को इंस्पिरेशन दी है, कितने म्यूज़िक लवर्स को इतना अच्छा म्यूज़िक देकर उनको जो है खुश कर देता है ये सॉन्ग. अभी जब 9 o'clock की ब्रेक से हम वापस आते हैं तो नॉर्मली एक गिव अवे मैं जो हमारे मेरे इस शो में होते हैं एक गिव अवे तो डेफिनेटली होता है. सो अभी जो है टाइम हो रहा है गिव अवे का, अभी मैं अनाउंस करूँगी. चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से है ये एंड क्या है गिव अवे वो मैं आपको बताती हूँ. फ़ोन नंबर भी बता देती हूँ स्टूडियो का एंड देन क्वेश्चन फिर मैं आपको पूछूँगी एंड देन आप मुझे कॉल करके उसका राइट आंसर दे दीजिए. And then you can win this giveaway from Chandigarh Bites, which is located in Allen. Aap jeet sakte hain kadai paneer ya kadai chicken, whichever one you prefer. This you can win from Chandigarh Bites in Allen. They have a special thali from Monday through Friday. So starting tomorrow, for the whole week until Friday, they have new dishes that rotate every day for lunch. So aap wahan jaye and if you want to enjoy the lunch thali from there, you will get a surprise because you don't know what they have made and what they have for that day. So it is a good surprise and their dishes are so delicious. They are known for cooking some delicious food. This is Chandigarh Bites. You can go there, claim your prize, which is either kadai paneer or kadai chicken. They are located on McDermott in Allen, so very close to the radio station here in McKinney. Chandigarh Bites ki website hai chandigarhbites.com. Aap jaakar check out kijiye inka menu, inki location, inke hours, and read about the reviews that they have. People love their delicious dishes. So ab jo hai main number aapko bata deti hoon, 972-235-5555. करना क्या है ये, दिस इज अ बिगेनिंग पीस ऑफ अ सॉन्ग, यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग, दैट्स इट. और अगर आप फर्स्ट कॉलर होते हैं गिविंग मी द राइट आंसर देन डेफिनेटली विल विन द गिव अवे. आई विल टेक योर कॉल्स ऑन एयर. सो 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग, the beginning piece of the song. यू हैव टू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई व्हाट्स द लिरिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. तो इस सॉन्ग के बोल मुझे बता दीजिए और आप जीत जाएंगे कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. हियर यू गो.

0: अब ये मैं जो है फिर से रिवाइंड कर दूंगी इफ आई एम अनेबल टू गेट एनी राइट आंसर्स. कॉल तो आ रही है, लेट मी टेक दिस पर्सन ऑन एयर, लेट्स हियर द राइट आंसर. वेल गुड मॉर्निंग, यूर लाइव ऑन एयर. सबसे पहले तो अपना नाम बताइए.
1: Azmina.
0: अजमीना जी, हाउ आर यू?
1: I am doing awesome. How are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. लॉन्ग टाइम. अच्छा, सो यू नो दी अर्ली.
1: शोला जो बढ़ के दिल
0: ओह
1: मेरा
0: माय
1: दर के
0: गॉड, आपने हाउ डिड यू गेस इट? मुझे लगा ये दो तीन मुझे रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे एंड देन आई विल गेट द राइट आंसर. सो यू आर द फर्स्ट कॉलर एंड यू क्रैक्ड इट. यस, इट इज शोला जो भड़ के दिल मेरा धड़के. यस, इसमें कौन है एक्टर?
1: हाँ
0: कैन यू टेल मी हिज नेम?
1: No, dear. I do not know
0: ओह
1: the actors. My dad used to listen to all these songs, and that's how I know all these old songs so very well.
0: एंड आपको मूवी का नाम पता है?
1: No, really, no.
0: नहीं.
1: The answer
0: ओह
1: is
0: माय
1: still no.
0: गॉडनेस, सो आई शुड हैव एस्क्ड. मुझे सिर्फ गाने का नाम नहीं, मुझे आप मूवी का नाम भी बताइए, है ना? आई शुड हैव एस्क्ड दैट. सो
1: I
0: मे बी उसमें आप
1: know. You should
0: शायद,
1: have. I just
0: हाँ
1: heard the music, and I was like, "Nah, this is it."
0: दिस इज इट एंड इट इज द सेम सॉन्ग. सो यस, यू हैव वन द गिव अवे. आप मुझे मुझे एक और फोन आ रहा है, लेट मी टेक दैट. वो आई गेस डिसकनेक्ट हो गया. सो ओके, आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर व्हाइल आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर एवरीबडी टू एंजॉय. शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के.

Well, I should have made it a little bit more challenging. इस फिल्म का नाम मैंने नहीं पूछा एंड प्रॉबली फ्यू ऑफ आर लिसनर्स मे नॉट नो. तो अगर आपको इस फिल्म का नाम पता है आई विल बी हैप्पी टू टेक यू ऑन एयर एंड इफ़ यू हैव एनी थिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट दिस फिल्म और द सॉन्ग और द एक्टर्स और द म्यूज़िक यू आर वेलकम टू डू दैट. ये फिल्म का नाम मैं नहीं बताऊँगी और मैंने हमारे लिसनर से पूछा, उनको भी नहीं पता था. आई एम श्योर यू नो इट, सो इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट कम ऑन एयर एंड टेल अस अबाउट द नेम द मूवी. देर इज़ नो रिवॉर्ड, देर इज़ नो अवार्ड, क्योंकि गिव अवे तो जीत गई हैं अजमीना जी एंड शी हैज़ वन द गिव अवे फॉर दिस वीक फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स दैट इज़ लोकेटेड इन एलन. कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन इज़ द गिव अवे. फिल्म का नाम इज़ अ क्वेश्चन मार्क, ऑफकोर्स आई नो इट. आप अगर जानते हैं तो बता दीजिए. शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के. सो कंग्रेचुलेशंस अजमीना जी, यू हैव वन द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स फॉर दिस वीक. अच्छा, हमारे लिसनर हैं जो ये वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, वी विल हैव टू मूव ऑन. बहुत अच्छा सॉन्ग है, राज कपूर की फिल्म का है, फिल्म श्री 420. What a lovely music and wonderful catchy song.

एक 90s, 20s एंड 30s की एक बहुत ही सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, सिंगर एक्चुअली. उन्होंने जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग में महारत हासिल की हुई थी. शी वाज ऑल्सो अ फोक सिंगर इन द पंजाब रीजन इन द 20s एंड द 30s. और वैसे वो पेशावर को बिलोंग करती थी, एंड अब तो खैर पेशावर पाकिस्तान में आता है, लेकिन बैक देन पूरा जो है वो हिस्सा पंजाब का ही होता था. और उन दिनों वो इतनी पॉपुलर थी एंड वन ऑफ अ काइंड यूनिक सिंगर थी. मोस्टली उन्होंने पंजाबी के सॉन्ग्स गाती थी, फोक सॉन्ग्स एंड ठुमरी में गज़ल कवाली एट्सेट्रा. उन्होंने काफ़ी जो है अपनी तालीम हासिल की हुई थी, और उनको जो है बहुत आगे चलकर जैसे सिंगर्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली, एंड देन जो है मेन स्ट्रीम सिनेमा में हिंदी फिल्मों भी इनफैक्ट उनके जो हैं कुछ फोक सॉन्ग्स गाए आगे चलकर. जैसे आशा जी ने, आशा जी का एक सॉन्ग था झुमका गिरा रे, बहुत पॉपुलर हुआ था, मेरा साया, जो डबल रोल फिल्म थी साधना जी की, उसमें उन्होंने जो ये सॉन्ग गाया था झुमका गिरा रे, ये सबसे पहली बार मैं जिन फोक सिंगर की, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर की जो मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम था मिस दुलारी, जो कि 20s एंड 30s में बहुत पॉपुलर सिंगर थी. उन्होंने इनफैक्ट झुमका गिरा रे गाना जो गाया था वो 30s में गाया था, एंड फिर आगे चलकर उसको जो है हिंदी फिल्म में मदन मोहन साहब ने यूज़ किया मेरा साया में. सो जस्ट अ लिटल फन फैक्ट, हम लोग कई बार हम जानते नहीं होते कि ओरिजिन जो है सॉन्ग का कहाँ से आता है. यस, देर हैव ऑलवेज बिन इंस्पिरेशंस टेकन फ्रॉम हॉलीवुड वेस्टर्न म्यूजिक, लेकिन ये वाला जो सॉन्ग है इसकी जो है इंस्पिरेशन इस पंजाबी सिंगर मिस दुलारी से ली गई थी, और उन्होंने ये वाला सॉन्ग 1930s में गाया था, जिसको आगे चलकर 1966 में आशा जी ने इतना बखूबी से निभाया. मेरे फादर जो हैं उनको ये सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट रहता है, एंड व्हेन ही टेल्स मी अबाउट दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूँ. सो थैंक्स पापा, आपने मुझे ये बताया, एंड आई एम एबल टू शेयर दिस ऑन एयर.

ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको मिस दुलारी का जो रियल ओरिजिनल वर्जन है जो उन्होंने 1930 में गाया था वो वाला भी मैं प्ले कर ही देती हूँ. एग्जैक्टली 2 मिनट्स बचे हैं, सो लेट्स लिसन टू दिस वॉइस ऑफ मिस दुलारी. ये ओरिजिनल वर्जन है जो 1930 में गाया था उन्होंने.

Welcome back. Thank you so much. You are tuned in to this show, this radio station, 104.9 FM, Fanesia Radio, 972-235-5555. And I am RJ Akrup. I'll be here in the studio until 10 o'clock. 3 ghante ka ye show Sunday subah aata hai aur fatafat se time nikal jata hai. Aap se baatein hoti hain, questions hoti hain, baatcheet, halchal karte karte itne achche achche songs aapki choice ke hum sunte hain. 3 ghante bahut sundar nikal jate hain. रवि इम्पोर्ट वेयरहाउस जो कि हैरी हाइंस पर लोकेटेड है, डैलस में है इनकी लोकेशन. हैरी हाइंस जो कि सभी जानते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे वेयरहाउसेज हैं और उनमें से एक ये वाला है रवीज इम्पोर्ट वेयरहाउस. बहुत बढ़िया, वहाँ पर अभी एक किक ऑफ डील डिस्काउंट सेल चलने वाली है 3rd and 4th को. 9 बजे से लेके 5 बजे तक पूरा दिन होगी ये सेल, किक ऑफ, समर किक ऑफ. एंड देन यहाँ पर जो है इस साल बिगर एंड बेटर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, डील्स मिलेंगी और आप ज़रूर जाइए. एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग. यू कैन मीट विद द वेंडर्स, डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. दिस इज रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस लोकेटेड ऑन हैरी हाइंस बुलेवार्ड इन डैलस. अब हम थोड़े से न्यूअर सॉन्ग्स की तरफ बढ़ेंगे, 90s एंड अबव. तो चलिए, ये वाला सॉन्ग है, फिल्म का नाम है आरजू, द न्यू वन. इसको थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ एंड देन लेट्स लिसन टू इट.

June 1st 1926 में एक बहुत पॉपुलर वेल नोन एंड काफ़ी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस का जन्म हुआ था. उनका नाम मर्लिन मनरो. जी हाँ, शी वॉज द फेस ऑफ हॉलीवुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. शी वॉज अ यंग स्टार. शी वॉज अ टीवी पर्सनालिटी. She was an Hollywood actress. She was an influencer. She was a socialite and so much more. बहुत well known थी. एंड उसमें उनको जो है even political figures भी उनको बहुत admire करते थे, especially Abraham Lincoln and Robert Kennedy जैसी personalities उनके साथ friendships थी. and she had a good working professional relationship with so many other personalities from Hollywood. She was born tomorrow. She's born tomorrow, June 1st 1926 में इनका जन्म हुआ था. एंड अगर इनकी मूवीज की बात करें तो फिर डेंजरस ईयर्स, एज अ फॉल्ट जंगल, ऑल अबाउट ईव, एज यंग एज यू.

Born tomorrow, she's born tomorrow, June 1st, 1926 में इनका जन्म हुआ था. एंड अगर इनकी मूवीज़ की बात करें तो फिर डेंजरस ईयर्स, एस अ फॉल, जंगल, ऑल अबाउट ईव, एज यंग एज यू फील, सो मेनी मोर, द लिस्ट इज़ एंडलेस. द मिसफिट्स, लेट सम लाइक इट हॉट, द प्रिंस एंड द शो गर्ल, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया. मार्लिन मंड्रो, बॉर्न ऑन June 1st, 1920 26th and died in the year 1962. So she represented Hollywood in the best of its faces. She was a movie star. She was a person, a child actor. She was a TV personality. She was just the glamorous personality, well known globally. Marlon Monroe, born on June 1st, 1926. Unka jo hai comparison, not compa unka comparison nahi, balki in fact hamari Bollywood में भी एक मार्लिन मंड्रो के साथ उनको कंपेयर किया जाता था. एंड शी वाज द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मधुबाला जी. हाँ, मधुबाला जी वाज द बॉलीवुड वर्जन ऑफ मार्लिन मंड्रो, आइकॉनिक लेजेंडरी इंडियन सिनेमा एक्ट्रेस ऑफ द गोल्डन एज. मधुबाला को जो है मार्लिन मंड्रो के साथ कंपेयर किया जाता था एज फार एज द ब्यूटी वॉज कंसर्न. अब जो अगला सॉन्ग होगा मधुबाला जी का तो नहीं है, लेकिन द रीसेंट टाइम्स, द सुपर स्टार ऑफ द रीसेंट टाइम्स, श्रीदेवी. फिल्म का नाम चांदनी, सॉन्ग का नाम भी चांदनी, ओ मेरी चांदनी.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के

0: बड़ी मस्ती करता है तू, मेरी सोना सोना सोना सोना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
1: चांदनी मेरी चांदनी।
0: अरे चाचा, चांदनी चांदनी करता है।

This part of our show is brought to you by AG Fintechs. They are one of the fastest growing tax firms in the U.S. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are definitely trusted, efficient, and get you ready for the future. You can call them at 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. Any tax needs that you have, if you want to get in touch with anything related to your taxes, then AG Fintechs should be the name on your mind. The phone number to get in touch with them is 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. ये इतना अच्छा सॉन्ग हम फिल्म का नाम चांदनी है उससे हम सुन रहे थे. एंड अगर आप रियलाइज करें, सोचें, तो इट जस्ट फील्स अ लिटल अपसेटिंग कि इस फिल्म को बनाने वाले यश चोपड़ा साहब नहीं हैं. इस फिल्म के तीनों जो एक्टर्स हैं, श्रीदेवी, ऋषि कपूर एंड विनोद खन्ना, तीनों में से अभी कोई भी अलाइव नहीं है. और इतना अच्छा काम ये छोड़ कर गए हैं, अपनी लेगेसी पीछे छोड़ कर गए हैं इन टर्म्स ऑफ द मूवी, इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स, डायलॉग्स एट्सेट्रा एंड एवरीथिंग. डायरेक्शन ऑफ कोर्स यश चोपड़ा साहब. सो इतना ऐसे लगता है कि आई विश कि थोड़ा और जी जाते तो और हमें इतना अच्छा काम देकर जाते. सो श्रीदेवी, ऋषि कपूर एंड विनोद खन्ना, ऑल थ्री वंडरफुल एक्टर्स, वेरी वर्सटाइल, वेरी टैलेंटेड, एंड ऑफ कोर्स द गुड लुकिंग एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर नॉट अलाइव एनी मोर. यश चोपड़ा साहब जो कि नोन थे इतनी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए, एंड ही इज ऑल्सो नॉट विद अस एनी मोर. Long live, हम उनको हमेशा याद करेंगे, रखेंगे, because of the work that they have left behind themselves in terms of films like these. चलिए अब अगला सॉन्ग, थोड़ा चीजी सा सॉन्ग है, 90s का सॉन्ग है, बट बहुत दिन हो गए नहीं सुना, तो चलिए दिस इज अ गुड प्लेस, गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड प्लेटफॉर्म टू लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म दैट बिकेम सो पॉपुलर इन द ईयर 1999.

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright.
3: हसीना मान जाएगी 1999 की ये फिल्म करिश्मा कपूर एंड गोविंदा जब 90s में इतने कामयाब जोड़ी थी, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया था, ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया था गोविंदा की कॉमेडी एंड करिश्मा कपूर के भी डांसिंग स्टाइल्स एक्टिंग स्टाइल्स बहुत अच्छी जोड़ी थी ये उन्हीं की ये एक और फिल्म जिसका सॉन्ग सोनू निगम एंड अलका याग्निक ने गाया व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर हसीना मान जाएगी फ्रॉम 1999. चलिए अब जो मैं सॉन्ग प्ले करूँगी वो होगा आज के शो का आखिरी सॉन्ग मीरा नायर की ये सक्सेसफुल फिल्म का सॉन्ग सुखविंदर की आवाज़ सुखविंदर सिंह की आवाज़ एंड बड़ा अच्छा सॉन्ग है. आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा. आपने सुना हुआ है ये बहुत बार, आज भी सुनकर आपको अच्छा लगेगा. सो दिस वुड बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ माय शो टुडे. और इसी के साथ लेती हूँ मैं आज के लिए इजाज़त. 3 hours का शो 7 to 10 और अब मेरे जाने का टाइम हो गया है. दिस इज़ आरजे एक रूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. मधुलिका आएंगी आपको अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के साथ एंटरटेन करेंगी अंटिल 12 o'clock. बट फॉर राइट नाउ दिस इज़ आरजे एक रूप साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. बाय बाय.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। वेल, संडे होता है हमारा कुछ फन फैक्ट सेगमेंट, जहां करती हूं आपके साथ कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स शेयर, और सुनते हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने। सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू ए ग्रुप फॉर अ फैब फैब शो शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM।

वेल, आप अपना जो ड्रीम होम है उसको रियलिटी बना सकते हैं विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, ड्रीम होम मोर्गेज जो है, दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998. तो इतने सालों से हैं. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 5626 और विजिट dreamhomemortgage.com. दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक.

That was taken from the movie साथ साथ. एंड यस, हम गानों के साथ साथ आपके साथ करते हैं कुछ मज़ेदार, फन और इंटरेस्टिंग बातें शेयर. तो अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो काफ़ी सेल्फ रिलायंट होते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट होते हैं एंड अ डिटरमिन्ड टू हैंडल थिंग्स देमसेल्व्स. उन्हें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए होती है. तो कहा यह जाता है, एज पर द स्टडी, दे ऑफन गेट अ डोपामिन बूस्ट फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स. यू नो, ऐसे लोग जो हैं दे इंजॉय फिगरिंग थिंग्स आउट विदाउट हेल्प. यू नो, कंप्लीटिंग अ चैलेंज ऑन देयर ओन कैन फील स्पेशली रिवॉर्डिंग बिकॉज दे वैल्यू कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ सफिशियंसी. मतलब उन्हें किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, अपने आप सब करेंगे. एंड दे आर मोर लाइकली टू पिक अप प्रैक्टिकल एबिलिटीज जैसे कि कार मेंटेनेंस, कुकिंग, होम रिपेयर्स, कोडिंग, ये सब, यू नो. एंड इट्स नॉट नेसेसरली बिकॉज दे लव ऑल ऑफ देम, बट बिकॉज दे डिसलाइक डिपेंडिंग ऑन अदर्स.

Well, that was the title track from पीकू. एंड यस, आज सुन रहे हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने. सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल द नेक्स्ट सॉन्ग इट्स टेकन फ्रॉम, वेल लेट्स सी इफ यू कैन गेस विच मूवी दिस इज फ्रॉम.

Well, that's right. It was taken from the movie Duplicate. And duplicate क्यों करना है? Stay original, right? तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो हैं वो अपना जो जी करता है ना वही करते हैं एंड दे ऑफन फील मोर सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजंस, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से पीपल हु फील दे आर चूजिंग देयर एक्शंस फ्रीली टेंड टू रिपोर्ट हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन इवन वेन द आउटकम्स आर नॉट परफेक्ट. You know, they are less influenced by trends. You know, like, do I actually like this instead of is everyone doing this? That's what जी करदा है वाले पीपल डू. यू नो, उनकी जो ब्रेन्स हैं दे मे एक्सपीरियंस लेस डिसीजन रिग्रेट. यू नो, जब लोग दे मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर ओन वैल्यूज रादर देन प्रेशर फ्रॉम अदर्स, दे आर ऑफन लेस लाइकली टू सेकेंड गेस देमसेल्व्स लेटर. अच्छा, कई लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ पीपल थिंक कॉन्फिडेंस कम्स फर्स्ट, बट ऑफन इट्स द ऑपोजिट. डूइंग वॉट यू वॉन्ट डिस्पाइट अनसर्टेनिटी ग्रेजुअली बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. तो भैया, करें जो आपका जी करता.

वेल दैट वॉज दिल धड़कने दो. वो होता है ना कि यार कुछ भी करो दिल धड़कने दो, डू वॉट यू वॉन्ट एंड डू वॉट यू प्लीज. वेल द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट. अली हैदर की पुरानी जीन्स इज द रिक्वेस्ट. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट इट्स नॉट रियली अबाउट जीन्स एट ऑल. इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट मिसिंग अ सिंपलर टाइम इन लाइफ. सो हियर इट इज, एंजॉय.

वेल दैट वाज पुरानी जीन्स. और अगर आपको हो रहा है नॉस्टैल्जिया और मिलने का मन है दोस्तों से, तो एक जगह बता सकती हूँ, एंड दैट इज पेज 3 ईटरी. बिकॉज यहाँ आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा मॉडर्न फ्लेयर के साथ. जी हाँ, कबाब्स, चाट्स, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स. यू नो, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच, डिनर, एनी सेलिब्रेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ. इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजर्स. विजिट page3eatery.com for further details. And we are celebrating Renika's birthday. Renika, wishing you a very, very happy birthday. This wish comes from Golu Mama, Anjali Mami, of course from Savya, Kashvi, Joy, Mayuri, Ayushi, Shruti, Surbhi, Soumya, Amay and Anvi, and of course from me, Madhulika, and the entire Fun Asia team. Wishing you a very, very happy, happy birthday.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
4: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
6: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स. फैसला क्लैरिटी के साथ.
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
10: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
10: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
14: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
19: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
20: Tracks that put you on the right track.

0: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम as the name suggests, Just Chill. कर रही हूँ आपके साथ कुछ मजेदार fun facts share और साथ ही सुन रहे हैं कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने. So studio का number रखें याद 972-235-5555 क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए एक giveaway सवाल. तो पहले ये गाना सुने. although वो गिव अवे का सवाल जो है वो इस गाने से रिलेटेड नहीं है, बट डू कीप लिसनिंग एज इज अ गिव अवे कमिंग फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन फॉर यू वेरी सून.
1: ओह जी

Well, that was a क्या सूरत है फ्रॉम बॉम्बे वाइकिंग एंड दैट वॉज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. अच्छा, अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे और गिव अवे का सवाल. वेल, ये गिव अवे है फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से. तो अगर आप क्रेव कर रहे हैं कुछ चीज़ी विद देसी ट्विस्ट, यू नीड टू हेड टू फन पिज्ज़ा किचन, जहाँ पर फ्लेवर मिलेगा विद फायर. जी हाँ, वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देर इज़ अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्ज़ा किचन. फॉर मोर डिटेल्स आप विजिट करें फन पिज्ज़ा किचन डॉट कॉम. और अब है ये सवाल. तो सवाल ये है कि मैं आपको एक अच्छा भला पॉपुलर गाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी पहली बार सुना होगा, ये गाना अच्छा है, बहुत सुना हुआ भी है, इसका मैं दे रही हूँ आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन. तो आपको मुझे गेस करके बताना है दैट विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो सवाल ऐसा है, ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है दैट वॉट काइंड ऑफ पजल इज दिस लाइफ, these things are not new, these things are old, who has stopped it, it is flowing water. I repeat, what kind of puzzle is this life, these things are not new, these things are old, who has stopped it, it is flowing water. So you have to tell me which song I am talking about and you can win this giveaway, which is a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen, by guessing which song did I just translate for you all.

0: ऑलराइट तो मैंने आपसे एक ट्रांसलेशन बताया था एंड बोला था कि ये $10 गिफ्ट कार्ड मिलेगा फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से, अगर आप गेस कर पाएंगे कि ये कौन से गाने की बात हो रही है। सो ट्रांसलेशन एक बार फिर, व्हाट काइंड ऑफ पजल इज दिस लाइफ, दीज थिंग्स और दीज स्टॉक्स आर नॉट न्यू, दीज स्टॉक्स और दीज थिंग्स आर ओल्ड, हु हैज स्टॉप्ड इट, इट इज़ फ्लोइंग वाटर एंड वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Hi, this is Achal here.
0: हे अचल, हाउ आर यू?
1: I'm fine, how are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट। सो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है?
1: आई थिंक इट्स जिंदगी कैसी है पहेली हाय
0: नहीं
1: कभी
0: नहीं
1: तो
0: नहीं
1: हंसी।
0: नहीं ये नहीं है। ये तो ये वाला गाना नहीं है। डू यू
1: ओह
0: वॉन्ट ट्राई वन मोर टाइम? आई गिव यू द ट्रांसलेशन वन मोर टाइम। वॉट काइंड ऑफ पजल और वॉट काइंड ऑफ रिडल इज दिस लाइफ, दीज थिंग्स और दीज स्टॉक्स आर नॉट न्यू, दीज थिंग्स आर ओल्ड, हु हैज स्टॉप्ड इट, इट इज फ्लोइंग वाटर। कैन यू गेस इट? यस नो मे बी सो।
1: नो
0: अच्छा ठीक है, तो
1: आई
0: आप होल्ड करिए, आई एम गोना यू नो वेट फॉर द राइट आंसर, बट आई कैन प्ले अनदर सॉन्ग इन द मीन टाइम। ऑलराइट
1: ओके श्योर थैंक यू सो मच।

0: ऑलराइट तो मैंने ये गिव अवे सवाल जो कि फन पिज्जा किचन $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते हैं वो दोबारा दोहराती हूँ. इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉलीवुड सॉन्ग. यू हैव टू टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द ट्रांसलेशन गोज समथिंग लाइक दिस. वॉट काइंड ऑफ पजल और वॉट काइंड ऑफ रिडल इज दिस लाइफ. दीज थिंग्स और दीज टॉक्स आर नॉट न्यू. दीज थिंग्स और दीज टॉक्स आर ओल्ड. Who has stopped it? It is flowing water. We do have a listener on air with us. Hi, you're live on air.
1: Hi, this is Achal here again.
0: Hey Achal, so bataye, this time can you guess which song is this?
1: Yeah, I think it's Kaisi Paheli Hai Ye, Kaisi Paheli Zindagani.
0: Okay, yeah, awesome, awesome.
1: Then I think Thama Hai, Roka Isko Kisne Hai Ye Bata.
0: Kya baat hai, wah, wah, wah, kya baat hai. Is baar to matlab pure gaane ka translation aa gaya. Awesome, Achal, so jeet liya aapne $10 gift card. I'm going to take you off air. And while, you know, I'm going to play this beautiful song, Kaisi Paheli Zindagani from Parinita for our listeners.
1: Okay, thank you so much.

क्या बात है, बड़े ही नॉस्टैल्जिक भरे, यू नो, नॉस्टैल्जिया भरे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है। बड़े दिनों बाद सुना था ये गाना, मुक्काला मुकाबला, ओ लैला। एंड द नेक्स्ट वन अगेन इज अ लिटिल ओल्ड वन, इतना भी ओल्ड नहीं है, बट हाँ काफ़ी हिट हुआ था जब ये गाना आया था। सो वेल, आपको और वेट नहीं कराती, लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल नंबर टेकन फ्रॉम आशिकी।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
5: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologereeshwar.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menus, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown, for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization NDAW.
10: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फनेशिया 104.9 FM.

right, that was the title track, Salaam Namaste. And yes, अभी एक just for fun पहेली पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले बताना चाहूंगी आपको, if you need financial guidance, then My Time Equity led by CPA Sudhir Pai offers portfolio management, real estate and alternative investments. आप विजिट करें mytimeequity.com और कॉल 469-702-1272. Alright, well, this is Madhulika लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम as the name suggest, just chill. Well, आपको मैं एक बॉलीवुड गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रही हूँ. यू हैव टू गेस द सॉन्ग जस्ट फॉर फन. सो द सॉन्ग गोज लाइक, ट्रांसलेशन गोज समथिंग लाइक दिस. द हार्ट इज सच दैट इट डज नॉट अग्री. द हार्ट रिफ्यूजेज टू लिसन. द रूल्स, द ट्रेडिशंस ऑफ लव आर वेरी डिफिकल्ट. Now tell me which song I'm talking about. I repeat, the heart is such that it does not agree. The heart refuses to listen. The rules, traditions of love are very, very difficult. It doesn't even understand this. So the studio number 972-235-5555. Tell me which song I'm talking about.

0: ऑलराइट नाज़नी, हमने भी आपसे एक सवाल पूछा था कि जस्ट फॉर फन आप मुझे बताएं कि मैं जो गाने का ट्रांसलेशन बता रही हूँ वो कौन सा गाना है. सो ट्रांसलेशन वॉज समथिंग लाइक दिस: द हार्ट इज सच दैट इट डज नॉट अग्री, द हार्ट रिफ्यूजेज टू लिसन, द रूल्स ट्रेडिशंस ऑफ लव आर वेरी डिफिकल्ट, इट डजेंट इवन अंडरस्टैंड दिस. सो वेल, वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ.
1: ये दिल है के मानता नहीं
0: क्या बात है, बहुत सही, बिल्कुल सही गेस किया. इज देयर अनदर सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू?
1: वही जो मैं बताए ना आपका, बन ठन चली.
0: बन ठन चली. ठीक है, तो पहले मैं दिल है कि मानता नहीं प्ले करूंगी, एंड देन आई विल प्ले योर सॉन्ग रिक्वेस्ट. इज दैट ओके?
1: ओके, थैंक यू,
0: ऑसम,
1: थैंक यू
0: थैंक
1: वेरी
0: यू सो
1: मच,
0: मच फॉर
1: थैंक यू.
0: पार्टिसिपेटिंग.

This is KZMP 104.9 FM फनीशा रेडियो पर हूँ छू तमारी साथी संगाथी नीलम दवे ने एक बार फरी थी तमारी सेवा में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही छू। रविवार नी बपोर ना 12 वागी ने 5 मिनिट थई गई छे। तमारो साथ संगात ईश्वरना आशीर्वाद साथे आजे पण घणा बधा गुजराती गीत सांभळशू, संगीत भाषा ने साहित्यनी वात करशू। तमे जाणता हशो कि दर रविवारे एक प्रयास होय छे कि तमारा माटे जे पण कार्यक्रम लावू एमां कंईक अलग अलग सवाल जवाबो होय छे अलग अलग विषयों पर। सो वेल, आजे पण सेगमेंट छे अलग अलग सवालों छे पण मारा नहीं, केम? कारण के आजे छे प्रश्नोत्तरी सेगमेंट जेमां तमारा सवालों हशे अने जवाबो हशे अमारा अथवा श्रोताओना। केवी रीते होय छे सेगमेंट एनी माहिती वधारे तमने आपीश आ खूब सुंदर स्तुति बाद ऑन 104.9 FM।

दिस इज KZMP 104.9 FM फनेश रेडियो पे आप है मेरी यानी कि नीलम के साथ और मैं रहती हूँ आपके साथ एवरी सैटरडे एंड संडेज संडेज 12 से 2 के बीच में, जहाँ पे 1 से 2 के बीच में ये आपके लिए गैर फिल्मी गाने प्रस्तुत कर रही हूँ और कुछ बातें होती है नेटफ्लिक्स की, अमेजोन प्राइम वगैरह वगैरह, ऑल द OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर वैसे गैर फिल्मी एक्चुअली फिल्मी गाने भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं जहाँ पर ये OTT प्लेटफॉर्म्स की ओरिजिनल फिल्म जो होती है वो हम जो देखते हैं उसकी करती हूँ मैं बातें, वेब सीरीज़ की करती हूँ मैं बातें, पाकिस्तानी ड्रामास, प्राइवेट एल्बम्स एंड यू नो सो मैनी डिफरेंट आर्टिस्ट, सो मैनी डिफरेंट वेन्यूज़, सो मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वो सारी बातें हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पे और 104.9 FM फनेशिया रेडियो। तो चलिए पहला गीत ऑफकोर्स फिल्मी गीत, लेकिन उसके बाद चलेंगे हम गैर फिल्मी गानों की तरफ। आप जानते हैं कि सैटरडे हो या संडे, विषय कोई भी हो, थीम कोई भी हो, लेकिन हमारे गाने होंगे बहुत ही सुरीले, यह है हमारा आपसे वादा एवरी वीकेंड। तो बने रहिए हमारे साथ 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

अच्छा, आप लोग संस्कृत जानते हैं? आपको लगेगा कि मुझे क्या हो गया भाई संस्कृत की बातें क्यों कर रही हूँ मैं हिंदी कार्यक्रम में। तो संस्कृत की बातें इसलिए कर रही हूँ कि ये जो आपने गाना सुना वो एक ऐसी फिल्म में था जो आर माधवन संस्कृत के टीचर होते हैं। जी हाँ, एंड संस्कृत इज सच अ डिवाइन लैंग्वेज, देव सब देव भाषा कही जाती है संस्कृत। एंड ऑन दैट नोट, बहुत कम लोग जानते हैं ये देव भाषा। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे श्लोक होंगे जिसका मतलब जानते होंगे, श्लोक बोलते भी होंगे, लेकिन नॉट एज अ होल सेंटेंस। अगर किसी के साथ बात करनी है वहाँ पड़े तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई वी जस्ट नो फ्यू वर्ड्स इन संस्कृत, राइट? एटलीस्ट मेरी तो ये बात है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। सो खैर, संस्कृत के भी टीचर्स होते हैं और ये एक पारंपरिक संस्कृत टीचर थे इस फिल्म में। और इस फिल्म में उनके सामने थी फातिमा सना शेख जो फ्रेंच सिखाती थी। तो दोनों की जो ये एक लव स्टोरी बनी थी, एंड यू नो पोल्स अपार्ट बोथ ऑफ देम। तो ये लव स्टोरी कैसे बनी थी, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रोमांटिक नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। एंड एज आई सेड ऑन दिस शो आई ट्राई, OTT प्लेटफॉर्म्स की हम ज़्यादातर बातें करते हैं, उसकी सीरीज़ एंड TV शोज़ एंड OTT फिल्म्स वगैरह वगैरह। आप जैसा कोई, जी हाँ ये नाम था इस फिल्म का, अभी तक आपको मौका नहीं मिला तो ज़रूर देखेगा ये। और चलिए चलते हैं अगली एक ऐसी ही OTT प्लेटफॉर्म की एक फिल्म की तरफ, ऑन 104.9 FM।

जब सामने तुम आ जाते हो, जा जाने क्या हो जाता है, जो आवाज़ है आपने सुनी जी, बिल्कुल आप पहचान गए ना, जगजीत सिंह साहब के साथ थी आशा जी की आवाज़। उन्होंने कम एल्बम्स में साथ काम किया है। एल्बम क्या होता है? एल्बम होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, राइट, जिसमें बहुत सारे गाने हो। तो ऐसा एल्बम एल्बम एज सच नहीं है दोनों का साथ में, कि जहाँ पे एक ही एल्बम में 8 या 10 गाने होते हैं और दो सारे गाने उन्होंने साथ में गाए। दे डू हैव अ कवर सॉन्ग। कवर सॉन्ग यानी कि इंडिपेंडेंट एक ही या दो गाने ऐसे होते। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे गाने साथ में गाए हैं, लेकिन कभी एल्बम नहीं निकाला कि भाई चलिए एक पूरा एल्बम है, हमने 8 10 गाने एक साथ में गा दिए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लता जी के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह साहब दोनों ने मिलकर एक एल्बम निकाला था, जहाँ पे पूरी एल्बम की जितनी भी कलेक्शन थी, 8 या 10 गाने थे, वो सारे दोनों की आवाज़ों में थे। और भाई आई थिंक मैनी मैनी अ टाइम्स आई हैव प्लेड दो सॉन्ग्स, लेकिन फिर से अगर मौका मिला तो मैं आपको बिल्कुल सुनवाऊंगी। खजाना है उस एल्बम का नाम। जी हाँ, खजाना ही है ना, लता जी की आवाज़ और उसमें हो जगजीत सिंह साहब की आवाज़। तो बस ऐसे ही आपके लिए खजाने लाते हैं हम भाई यहाँ पे एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम।

0: कुछ प्राइवेट एल्बम्स के गाने, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की आवाज़ें, कुछ नई आवाज़ें, उन्होंने 4.9 FM फनीशा रेडियो, जो आवाज़ें फिल्मों में आप इतना नहीं सुनते। ड्रीम ओ मॉर्गेज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, नंबर है उनका 9722455626 और यू कैन विजिट dreamomortgage.com। 1998 से आपकी सेवा में, लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑल 50 स्टेट्स। एक स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस अगर आपको करना है, कि घर के बाद वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं ना, घर को सेटल करना, ये करना, वो करना, तो एक आपका जो एक्सपीरियंस हो वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर द मॉर्गेज। एक बार फिर से नंबर देना चाहूँगी, 9722455626, दैट इज 9722455626, एंड इट इज़ ड्रीम ऑफ मॉर्गेज। उमर ख्वाजा, जी हाँ बिल्कुल, जब एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारी ऐसे भी दिक्कतें होती है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ दैट कम्स फर्स्ट, तो जितनी और भी प्रॉब्लम्स है वो उसके लिए आप उमर ख्वाजा को कॉल कर सकते हैं, एंड दे कैन हेल्प यू इन डीलिंग विद अदर थिंग्स लाइक हाउ कैन यू गेट कंपनसेटेड। तो उसके लिए वंस अगेन द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट इज़ omar.com, और आपको बिल्कुल ये जानकर खुशी होगी कि दे डोंट चार्ज अनटिल यू विन। जी हाँ, सो इट्स ऑल फ्री, यू कैन कॉल देम फॉर द फ्री कंसल्टेशन, एंड द नंबर वंस अगेन इज 4693005046, दैट इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट इज attorneyomar.com। मैं हूँ नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। आपका और हमारा साथ सैटरडेज 12 से 3 के बीच में, संडेज 12 से 2 के बीच में, जहां 12 से 1 के बीच में कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूं मैं गुजराती रीजनल, एंड 1 से 2 के बीच में आप सुन रहे हैं मुझे इस गैर फिल्मी गानों के साथ। कुछ और भी गाने बाकी है, कुछ और भी बातें बाकी है, कुछ सीरीज की बातें करेंगे, कुछ नेटफ्लिक्स ड्रामास की बातें करेंगे, उसी के साथ पाकिस्तानी ड्रामास के भी बहुत सारे गाने होते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो वो भी बातें होगी। जहाँ बातें होती है फिल्मों की वो नहीं करते हम, क्योंकि आज का है सेगमेंट गैर फिल्मी। तो बने रहिए 2 बजे तक, जी बिल्कुल, ये सुरों की महफिल सजेगी। धूप बहुत है बाहर, तब लगता है जब धूप बहुत आ जाए कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन खैर हम तो रहेंगे आपके साथ टिल टू।
1: फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। फॉर मोर देन 40 इयर्स रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम। रॉड बिलीव्स इन सेफर नेबरहुड्स, स्मार्टर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली वैल्यूज दैट मेक्स फ्रिस्को स्पेशल। This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
2: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 9455270897, or visit astrologerishwar.com.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस, और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लान
9: प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
10: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DFW.
11: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

नेहा कक्कर और टोनी कक्कर, जी हाँ, दोनों की आवाज़ों में आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। दोनों दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जी हाँ, भाई बहन है दोनों, और बचपन से दोनों गाते हैं स्टेज पे अपने पापा के साथ, और इसीलिए नाउ दे हैव देयर ओन बैंड आई बिलीव ऑल्सो टीवी शोज। जहाँ जहाँ आपकी नज़र होती है नेहा कक्कर होती है वहाँ एज अ जज, शी जजेज ऑल दिस शोज, इंडियन आइडल हो या कोई भी और शो। सो बस एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आप सभी का ऑन दिस शो। मैं हूँ नीलम, आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ हर रविवार की दोपहर 1 से 2 के बीच में कुछ गैर फिल्मी गाने। लंच आवर हो चुका है तो चलिए तंदूरी फ्लेम की नाम आपको दे दूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर आप जा सकते हैं हर दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, हर वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं या नॉट सो स्पाइसी, लेकिन रिच करीज है आप ही के लिए नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स के साथ, एंड दैट इज़ ऑल्सो सम होम स्टाइल पंच। कहाँ पे? दैट इज़ वंस अगेन तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्डलैंड। तो अगर आप उस एरिया में है या जाना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा तंदूरी फ्लेम को। बिजनेस से इसकी जब भी बात निकलती है तो पहले हमारे जहन में बात आती है कि भाई टैक्सेस तो होते हैं, कितने टैक्सिंग होती है उसमें और कितने सारे टैक्स भरने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, हम आपको दे देते हैं ऐसा नंबर जिनका नाम है एजी फिनटेक्स। चाहे आपका बिजनेस है या खुद आपके लिए टैक्स फाइल करना चाहे, दे आर ट्रस्टेड एंड एफिशिएंट, एंड द वेबसाइट इज agfintechs.com। 4699429888, दैट इज 4699429888। और चलिए अब मैं आपको एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रही हूँ विच इज़ अ लाइव सिम्फनी के साथ राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में आप गाना सुनेंगे। देखिए राहत फतेह अली खान साहब ने बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों में, हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में गाने गाए हैं। नॉट ओनली दैट, ऑफ़ कोर्स बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामाज में उनकी प्राइवेट एल्बम्स भी है, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट हो जहाँ पर लाइव सिम्फनी विथ हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिशियंस ऑन द स्टेज, ये बात सुननी कुछ अलग है ना। तो चलिए सुन लेते हैं 104.9 FM।

such a beautiful voice, and that was with all these beautiful musicians on the stage. जी हाँ, आपने सुनी ये प्रस्तुति जहाँ पे hundreds of musicians with राहत फतेह अली खान साहब. कुछ ऐसे ही अलग प्रस्तुति लाने की मेरी यानी कि नीलम की होती है छोटी सी कोशिश यहाँ पे every weekend during this segment.

दिस ब्यूटिफुल म्यूजिशियंस ऑन दी स्टेज. जी हाँ, आपने सुनी ये प्रस्तुति जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिशियंस विथ राहत फतेह अली खान साहब. कुछ ऐसे ही अलग प्रस्तुति लाने की मेरी यानी कि नीलम की होती है छोटी सी कोशिश यहाँ पे एवरी वीकेंड ड्यूरिंग दिस सेगमेंट एक से दो के बीच में. जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी के कॉल्स के लिए और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी पसंद को पसंद करने के लिए. अगली प्रस्तुति सुनवाने से पहले, आपको रणवीर शौरी एज एन एक्टर अच्छे लगते हैं, राइट? इज ग्रेट ग्रेट एक्टर और वो बहुत सारी डिफरेंट मूवीज़ करते हैं, वर्सेटाइल रोल्स होते हैं उनके एंड कुछ सीरीज़ में भी आते हैं. नाउ हिज अपकमिंग उनकी जो सीरीज़ है उसका नाम है द क्राफ्ट. नाउ सुनने से ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या होगी उसमें कहानी, राइट? द क्राफ्ट लाइक वॉट क्राफ्ट, वॉट इज़ अ आर्ट. लेकिन उसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इट्स अ फैमिली ड्रामा. जी हाँ, एंड आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज. जून में आने वाली है ये सीरीज़ जो बिल्कुल पारिवारिक मनोरंजन होगी एंड कुछ ड्रामाज होंगे, आपको अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट इट्स अ फैमिली ड्रामा. तो चलिए हम भी देखेंगे रणवीर शौरी को और ऐसी ही बहुत सारी कुछ गैर फिल्मी बातों के साथ, गानों के साथ, एवरी वीकेंड विथ मी योर होस्ट नीलम.

0: thing that I always wanted to tell you. Since the very first day I saw you, I love you.
1: आपका नाम नेशन में बहुत हो जाए, आप इतने बड़े सिंगर बन जाए कि आपको हर कोने में, हर घर में, हर शादी में, हर पार्टीज में, हर दिल टूटने पे, हर दिल लगने में सुना जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे कि नेशन से इंटरनेशनल सिंगर बन जाए, राइट? यही होती है कुछ बातें आर्टिस्ट की, सिंगर्स की, एंड स्पेशली इन दिस डेज एंड एज कि जहाँ पर यू डू हैव एन एक्सेस कि आप इंटरनेशनल स्टार्स के साथ, इंटरनेशनल गायक के साथ कॉलैब कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट. और वही बातें होती है हमारे सिंगर्स के साथ, एंड श्रेया घोषाल हैज़ बीन वेरी वेरी लकी आई मस्ट से कि उन्हें ये मौका मिलता है कि शी इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद सो मेनी डिफरेंट सिंगर्स. उनकी कुछ स्टाइल बदलती है वो, एंड शी इज़ ट्राइंग सो इन डिफरेंट विद, एज आई सेड कि आपको हर जगह पे, हर कोने पे पॉपुलैरिटी मिल जाए, फिर लगता है कि कुछ अलग किया जाए, राइट? कहीं पे जहाँ पे मेरी आवाज़ नहीं सुनी वहाँ जाया जाए. खैर, वो जहाँ पर भी जाएगी लेकिन उनकी आवाज़ तो हम आपको सुनवाते रहेंगे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. यही है हमारा काम, अच्छी अच्छी आवाज़ें आपको सुनवाना, अच्छा संगीत लाना एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM फन एशिया. आप मुझे सुनते रहिएगा, बस आपका और हमारा साथ आज इतना ही, लेकिन अगले शनिवार मुलाकात होगी 12 बजे. तब तक के लिए Keep listening and enjoying Fun Asia Radio.

हमारे एक लिसनर की पसंद पर आप ये सुन रहे थे ऑन द कोक स्टूडियो एंड ही वांटेड टू लिसन टू दिस सॉन्ग, तो बिल्कुल. लेकिन सिंस इट्स अवर हिंदी शो, आई प्रीफर प्लेइंग ओनली हिंदी सॉन्ग्स. बिल्कुल, तो ये मुलाकातें हमारी होती रहेंगी, म्यूजिकल मुलाकातें एवरी वीकेंड.

0: All right, we are about to head into a quick commercial break, but don't go anywhere. Stay tuned. We have lots of fun sports updates, including the NBA, IPL, some fun movie updates, song requests, and so much more. This is The Melting Pot, and you're RJ Rhea, Fun Asia Radio 104.9 FM. Stay tuned, everyone.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
3: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
2: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
3: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
3: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
2: नंबर बोल जल्दी.
3: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
4: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं ही तो.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
0: All right, welcome back, Dallas. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio with your RJ Rhea. We are entering the second half of our show, and to kick things off for these next amazing 30 minutes with plenty of fun things to discuss, we do have yet another song request by Sadim. So I hope you enjoy.

0: All right, it definitely is the time to disco as we use this disco vibe into summer. I know I already announced summer's began, whatever, whatever, but I'm really excited for the summer, and I know everyone else is too. I know this is also the moment that a lot of our callers have been waiting for, and after tallying up the votes, I have to say that because we live in Texas, the San Antonio Spurs won by a landslide. I think I got like 10 callers who said that they want the Spurs to win and about one that they want the New York Knicks to win, but hey, what can we say? We are in Texas, and San Antonio is, of course, going to prevail in the state of Texas. I hope everybody enjoyed this wonderful show. Stay tuned to 104.9 FM Fun Asia Radio. I'll be back next week, same time, same day, 2 p.m. to 3 p.m. every single Sunday, but stay tuned because we here at Fun Asia have so much more waiting for you. Thank you so much, and have a great Sunday and a great summer, everybody.
1: Pushpa, Jhook.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
7: कौन सा?
6: कैरेट लेन।
7: वेट, व्हाट? कैरेट लेन, इंडिया वाला?
6: हाँ वही।
7: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
6: देखा, ढूंढ के दिया ना।
8: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
14: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
15: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 3:08 हुए हैं। टुडे इज द 31st of May, द लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड अ स्प्लेंडेड संडे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। आज के सेगमेंट का हम आगाज करेंगे महफिल गज़ल के साथ। जी हाँ, आज आपको सुनवाएंगे हम खूबसूरत आशार और मशहूर ज़माना आप सबकी पसंदीदा गज़लियात, जिसमें हम आपकी फरमाइश भी ले सकते हैं। गारंटी नहीं देती, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। ये पहली गज़ल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की, जगजीत और चित्रा सिंह की गाई हुई थी, एंड आई एम श्योर कि ये आपने पहले ज़रूर सुनी होगी, और ये भी हो सकता है कि ये आपको बेहद पसंद हो। बस ऐसी ही कुछ आपकी पसंद की और कुछ हमारी पसंद की गज़लें हम आज आपको सुनवाएंगे। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कोई गज़ल तो कॉल कर सकते हैं, पर ये सोच कर ना कीजिएगा कि ज़रूर प्ले होगी, कोशिश ज़रूर की जाएगी। 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर। महफिल गज़ल की बात आती है तो एक बेहद मशहूर गज़ल सिरा, और आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उनकी गायकी का अलग अंदाज था और बेहद खूबसूरत था, और ऐसा कि अब जब वो हमारे बीच नहीं, फिर भी उनकी आवाज़ हमारे दिलों को छूती है।

शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। एक बार फिर खैर मकदम करती हूँ तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशर रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। आपके पेशे खिदमत है सेगमेंट महफिल गजल का। प्रोग्राम का नाम है दिल से, जो लेकर आती हूँ मैं हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM। अगले कुछ मिनटों में यानी कि 4 बजे तक हम आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत गजलियात और उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये गजलें पसंद आएंगी। अब जहाँ गजलें सुना रहे हैं तो कुछ शायरी भी हो जाए। अर्ज किया है, वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, हमेशा इश्क के जेरे असर नमाज पढ़ी। मैं जिंदगी को मुसलसल सफर समझती हूं, मैं जिंदगी को मुसलसल सफर समझती हूं, सो जब नमाज पढ़ी मुख्तसर नमाज पढ़ी। मैं 5 वक्त अजानों पे सोचती हूं उसे, मैं 5 वक्त अजानों पे सोचती हूं उसे, कभी कजा ना हुई वक्त पर नमाज पढ़ी। वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, हमेशा इश्क के जेरे असर नमाज पढ़ी।

दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, वैसे दुनिया के तो बहुत सारे नाम हैं। 23 मिनट्स पास 3 अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, जिसमें आपकी खिदमत में पेश की जा रही है स्पेशल सेगमेंट महफिल गज़ल, जिसमें हम आपको मशहूर गज़लें सुना रहे हैं। एज सच रिक्वेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज, और फ्लेवर लाउंज की तरफ से आप के पास एक मौका है दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का। आई एम गोइंग टू प्ले दिस ब्यूटिफुल गज़ल राइट आफ्टर द नेक्स्ट शेर, और आपने बताना है कि गायक गज़ल सिरा का नाम क्या है। आई विल टेक कॉलर नंबर 4 टू गिव मी द करेक्ट आंसर। और याद रखिए, अगर आप पहले विन कर चुके हैं फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये इनाम, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी डिसक्वालिफाइड, और ये गिव अवे डाइन इन ओनली है। फॉर दोज ऑफ यू हैव नेवर बीन टू फ्लेवर लाउंज, इट्स अ ग्रेट रेस्टोरेंट एंड इट्स लोकेटेड राइट ऑफ प्रेस्टन इन फ्रिस्को। सो एक बार फिर बता दूं कि इनाम क्या है। इनाम है ढाबा स्टाइल चिकन करी, या अगर आप वेजिटेरियन हैं यू कैन एंजॉय दाल मखनी फ्रॉम फ्लेवर लाउंज। मैं एक गज़ल प्ले करने जा रही हूं, और आपने बताना है कि गज़ल सिरा कौन है। एंड आई विल बी टेकिंग कॉलर नंबर 4। नंबर भी फिर से शेयर कर देती हूँ, 9722355555। दैट्स 9722355555। और इस गजल से पहले एक शेर पेशे खिदमत है। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। आइए अब लेकर चलते हैं आपको उस गजल की तरफ। आप सुनिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये गजल सिरा कौन है, और फिर जीतिए फ्लेवर लाउंज की तरफ से मजेदार इनाम।

0: होता।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
7: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
6: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
8: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
14: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
15: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। कमर्शियल ब्रेक में आपने हमारे बहुत से स्पॉन्सर्स के पैगाम सुने, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द वंस हु हेल्प अस ब्रिंग दिस एंटरटेनमेंट टू यू। सो अगर आप भी बिजनेस ओनर हैं और अपना मैसेज हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज कॉल मी, आई विल हेल्प यू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू योर बिजनेस एंड फिट इन योर बजट. आप यहां स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 972-235-5555. दैट्स 972-235-5555. इस वक्त आप सुन रहे हैं महफिल गजल का सेगमेंट जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत गजलियात. कमर्शियल ब्रेक से पहले सुन रहे थे आप अनूप जलोटा को, एंड दैट वॉज माई क्वेश्चन कि ये गजल किसने गाई है. शिवानी गेव मी द करेक्ट आंसर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवानी. आई होप यू विल एंजॉय द डिलिशियस फूड एट द फ्लेवर लाउंज. अब आइए चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ, और इस गाने को सुनने की रिक्वेस्ट की है मुस्तफा साहब ने. दिस इज नॉट गाना, एक्चुअली गजल मेहदी हसन साहब की आवाज में.

मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. साउंड वाजंट वेरी गुड, सो वी आर गोना ट्राई अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग. होपफुली इसका साउंड पहले वाले से बेहतर होगा.

पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। सुन रहे थे आप आबिदा परवीन जी की आवाज में ये मशहूर जमाना गजल। एक बार फिर वेलकम टू 104.9 FM Fun Asia Radio. I'm your host, Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 PM और 4 बजे तक जारी रहेगा गजलों का ये सेगमेंट, यानी के महफिले गजल। इससे पहले कि हम अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, I want to tell you about connecting America. Well, with connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They can also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So, agar aapko lag raha hai ki you want to know more about this, you need to call James at 321-888-7345 or you can visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. That's Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. और अब मरियम जी की रिक्वेस्ट पर हम सुनते हैं एक बार फिर आप और आपके और हम सबके फेवरेट जगजीत और चित्रा सिंह को।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जिनके होने से हमें ऐसा एहसास होता है दैट वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, कि वो हैं तो हमें तसल्ली होती है। उनके होने का एहसास ही हमें कंफर्ट देता है, सपोर्ट देता है। तो बस फिर यूं ही समझ लीजिए कि ये गज़ल उन लोगों के लिए है जो आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून और मोहब्बत वाली फीलिंग देते हैं। इट इज़ 3:50। आज के इस प्रोग्राम में, यानी कि दिल से प्रोग्राम में, आप सुन रहे हैं ये सेगमेंट महफिल गज़ल, जो 4 बजे तक जारी रहेगा। जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, गज़ल एक्चुअली, आई एम श्योर कि जब भी आपने इसे सुना आपको यूं ही लगा होगा कि ये एक गाना है। इनफैक्ट फिल्म में इसी गीत के 2 वर्जन हैं एंड इट्स एक्चुअली अ गज़ल। और जो गज़ल वाला वर्जन है वो परवीन सुल्ताना ने गाया है, और जो गीत स्टाइल में इसी को गाया गया है वो किशोर कुमार साहब ने गाया था। जैसे ही आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे। आइए फिर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और ये हमारी एक अच्छी लिसनर ने इसकी फरमाइश की थी, अब उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, बट यू नो व्हाट, उन्हें पता है वो कौन है, तो फिर आइए सुनते हैं परवीन सुल्ताना की आवाज़ में।

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 1981 में रिलीज हुई फिल्म कुदरत से ली गई ये गजल अरुणा ईरानी पर पिक्चराइज की गई थी और आवाज परवीन सुल्ताना की। और इससे पहले कि हम आपको प्रोग्राम की आखिरी गजल की तरफ लेकर चले, कुछ आशार आपकी खिदमत में। तो फिर किसी के कहीं यार हो गए हो क्या, हमारे बाद वफादार हो गए हो क्या? तो फिर किसी के कहीं यार हो गए हो क्या, हमारे बाद वफादार हो गए हो क्या? सुना है ढूंढ रहे हो नया खिलौना कोई, सुना है ढूंढ रहे हो नया खिलौना कोई, तो पुराने वाले से बेजार हो गए हो क्या? झिझक रहे हो मुझे भी गले लगाने से, झिझक रहे हो मुझे भी गले लगाने से, खुदा ना खास्ता होशियार हो गए हो क्या? दुआएं मांग रहे हो कि इश्क हो जाए, दुआएं मांग रहे हो कि इश्क हो जाए, तो मरने के लिए तैयार हो गए हो क्या? तो फिर किसी के कहीं यार हो गए हो क्या, हमारे बाद वफादार हो गए हो क्या? और अब जो वक्त पे आने लगी है नींद तुम्हें, और अब जो वक्त पे आने लगी है नींद तुम्हें, हमारे ख्वाब से बेदार हो गए हो क्या?

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: चिकन बनाना,
11: चिकन बनाना,
12: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Tumne fir card use kiya?
15: Karna pada. Fees due thi aur already late ho chuke hai payments mein.
14: Par maine abhi check kiya, hamara credit score aur gir gaya. Kaise manage hoga sab?
15: Mujhe samajh nahi आ रहा क्या करूं?
16: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। जीनो क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ। जीनो क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स। यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3-day right to cancel.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
19: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
20: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.
21: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात. थैंक यू ऑल सो मच फॉर बीइंग सच ग्रेट लिसनर्स फॉर द पास्ट वन आवर. तीन से चार के दरमियान हम आपके लिए एक सेगमेंट पेश कर रहे थे महफिल गज़ल, जिसमें हमने आपको मशहूर गज़लें याद सुनवाई. आई होप कि आपको वो सेगमेंट पसंद आया. और अब 4:05 हुए, दैट्स 4:05 ऑन दिस 31st of May 2026. इट्स अ लवली संडे आफ्टरनून एंड वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड सेगमेंट. एक सेगमेंट जो मैं पहले भी किया करती थी, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद था, शब्द सेगमेंट था. शब्द सेगमेंट पे हम कोई एक वर्ड लेकर आपको मुख्तलिफ गाने सुनवाते थे, अलग अलग सिंगर्स की आवाज़ में, अलग मूवीज के गाने. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डीज एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द न्यू ईयर्स. सो आज भी इसी तरह हम 1970s के एक फिल्मी गीत के साथ सेगमेंट का आगाज करेंगे और आप लोग सुनिए और देखिए आप लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं कि आज का शब्द, आज का वर्ड, आज का लफ्ज क्या है जिससे रिलेटेड तमाम गाने हम आपको सुनवाएंगे बिटवीन 4 एंड 5 PM. सो आइए करते हैं शुरुआत.

टैगोर भी थी। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। शब्द के सेगमेंट्स में शिरीन जी ने बिल्कुल सही गेस किया, हमारा आज का वर्ड है दिल, यानी कि बाकी तमाम गाने जो भी हम आपको सुनवाएंगे दिल वर्ड से रिलेटेड होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत करते हैं हम पुराने गानों के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 70s का गाना तो सुन लिया, अब हो जाए एक 80s का गाना।

है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। आशा फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप आशा जी की आवाज में। होप यू गाइज एंजॉयड इट। 14 मिनट्स पास्ट 4 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सेगमेंट शब्द का, जिसमें हमने सेलेक्ट किया है आज एक वर्ड दिल और उसी से रिलेटेड आपको गाने सुनवा रहे हैं, शुरुआत की पुराने गीतों से और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गाना अभी अभी आपने सुना 1980 की फिल्म से लिया गया था और अब लेकर चल रहे हैं हम आपको 1987 की तरफ। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। दिस इज अमरीन हसनात।

1987 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने में अनीता राज और विनोद खन्ना को देख सकते हैं आप. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनाज. सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस दिस इवनिंग. आई डिड वांट टू मेंशन, अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है, चाहे वो कोई छोटी सी पार्टी हो या पूरा वेडिंग रिसेप्शन हो, My company, Awesome Events, can help you out. From full service event coordination to day of event coordination. Jaisi bhi help aapko chahiye, I'd be more than happy to assist. You're welcome to reach me directly at 214-725-7466. Ya phir aap yahan studio mein bhi call kar sakte hain at 972-235-5555. Once again, Through Awesome Events, I can help you with all types of entertainment for your event as well as full event planning and management. Mauka dijiye hame, I guarantee you will not be disappointed. And the number again, 214-725-7466. Aaiye segment ko continue karte hain hum. 1991 mein released hui super hit film, Dil Hai Ke Manta Nahi Ke, title track ki taraf.

दिल है के मानता नहीं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, दिल है तो बच्चा है जी। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। ये है सेगमेंट शब्द का, जिसमें हमारा आज का वर्ड, आज का लफ्ज है दिल, इसीलिए दिल से रिलेटेड गाने आपको सुनवा रही हूं। वी स्टार्टेड फ्रॉम सॉन्ग फ्रॉम द 70s एंड वी हैव रीच्ड The 90s. I hope you've been enjoying my song selection. इससे पहले के सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, a quick shout out to AG Fintechs. Now, I'm sure you already know, AG Fintechs happens to be one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. They are trusted and efficient, and they can get you ready for your future. So call KJ 469-942-9888 or you can visit agfintechs.com. Film Dil Hai Ke Manta Nahi ka ye gana Pooja Bhatt aur Aamir Khan par picturized kiya gaya tha. और इसी साल एक और फिल्म आई थी जो बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। ना सिर्फ फिल्म हिट थी बल्कि फिल्म के सारे गाने भी। एंड आई पिक दिस वन सॉन्ग एंड आई एम श्योर यू आर गोना लाइक इट। फिल्म का नाम है साजन।

बहुत कम ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग होंगे जिनमें दिल का शब्द नहीं यूज किया जाता, बिकॉज प्यार और मोहब्बत दिल ही से तो शुरू होता है, राइट? और फिर अगर वो प्यार खो जाए तो फिर दिल टूट जाता है। गर्ज हर दूसरा गाना दिल से रिलेटेड होता है, और शायद इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी दिल से ही तो है। होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग दिस लवली संडे आफ्टरनून। आई नो स्कूल इज आउट एंड प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ पीपल आर एट अ टाउन, या ये हो सकता है कि आप डैलस विजिट कर रहे हैं, इन विच केस वेलकम टू डैलस। कैसा लगा हमारा शहर आपको? वेल करंटली इट्स काइंड ऑफ वार्म, एट लीस्ट मिकिनी के एरिया में द टेम्परेचर इज 94 degrees Fahrenheit, बट डोंट वरी दैट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर टुडे, लो वाज 74। कल का मौसम भी कुछ ऐसा ही गरम गरम सा रहेगा, 94 फॉर अ हाई एंड 75 फॉर अ लो। आइए हमारे शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1997 में रिलीज हुई फिल्म कच्चे धागे के इस गाने की तरफ। You're listening to Dil Se, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप 2000 में रिलीज हुई फिल्म धड़कन से लिया गया ये गाना। अब यू जस्ट ट्यून्ड इन, शब्द का सेगमेंट इस वक्त पेश किया जा रहा है आपके लिए और जिसमें आज हमारा वर्ड हमारा लव्स है दिल। एंड वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सॉन्ग फ्रॉम द 70s, 80s, 90s, 2000 पर पहुंच गए हम और इसी का कनेक्शन है ये अगला गाना। एंड द फनी थिंग इज द नेक्स्ट टू सॉन्ग आर संग बाय द सेम सिंगर, but I know you're gonna like them both.

डूइंग दिस एवरी संडे बिटवीन 4 and 5 PM जिसमें कोई एक वर्ड लेकर हम आपको सुनवाएंगे बेशुमार गाने, कुछ नए और कुछ पुराने.

इश्किया फिल्म से लिया गया ये गाना नसीरुद्दीन शाह और विद्या बालन पर पिक्चराइज किया गया था। आई होप कि आज आप लोग हमारे इस शब्द सेगमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। वी आर गोना बी

सुबिनकर गौर अलीशा चनोई की आवाज में सुन रहे थे आप क्रिश 3 से लिया गया ये गाना. एंड नाउ वी आर गोना टेक यू टू आवर लास्ट सॉन्ग फॉर शब्दनी. प्रोग्राम अभी 6 बजे तक जारी रहेगा, बट हियर इज द लास्ट सॉन्ग फॉर द शब्द सेगमेंट. आज का शब्द था दिल और ये है आखिरी गाना. कमिंग अप नेक्स्ट इज द बॉलीवुड ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर. बैक टू बैक रिक्वेस्ट जस्ट फॉर यू.

0: was Atif Aslam. You're listening to the Drive Through Request Hour. Fanisha Radio, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम? हेलो
1: हेलो
0: जी, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: मेरा नाम जीत है.
0: ऑलराइट, हम इस वक्त नए गाने प्ले कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे.
1: एक सुशांत सिंह मूवी का ड्राइवर बोल के एक मूवी था, उसमें मलंग सॉन्ग था.
0: ड्राइवर वॉज द नेम ऑफ द मूवी?
1: या नेटफ्लिक्स का एक मूवी था सुशांत सिंह.
0: ओके, और गाने का नाम था मलंग?
1: या आई थिंक मलंग.
0: Okay, for some reason I'm not able to find that. Do you think उसका कोई और नाम भी हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि गाने का नाम कुछ है. Are you talking about Drive मखना?
1: Yeah, मखना.
0: मखना, okay. I was like, okay, मलंग नहीं मिला मुझे. All right, here is your song. Thank you for your call. वैसे कहाँ से call कर रहे हैं आप हमें?
1: मैं कोपल एडियस.
0: ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल. ये रहा आपका गाना.

0: और मिनी की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम झूमे, जो पठान फिल्म का टाइटल ट्रैक शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज किया गया था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। थैंक यू, आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
1: रूपा।
0: जी रूपा, बताइए कौन सा गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: धुरंधर का टाइटल सॉन्ग प्लीज।
0: धुरंधर द ओरिजिनल वन, राइट?
1: यस।
0: ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू। और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
1: फ्लावरमोंड।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये रहा आपका गाना, एंजॉय।

0: ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ
1: Get ready?

रणवीर सिंह पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म बाजीराव मस्तानी से लिया गया था। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लवली संडे इवनिंग। इट्स 36 मिनट्स पास्ट 5 ऑन दिस 31st ऑफ मई 2026। ये हमारा ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के गाने प्ले कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दे आर न्यू अपबीट सॉन्ग्स। जैसे कि ये अगला वाला गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म कमीने।

0: रात की मटकी तोड़े कोई गुड लक निकाय, आई डोंट नो मटकी तोड़ने से गुड लक कहाँ से आती है, पर अगर आती है तो थोड़ी सी हमें भी भेज दीजिए। 39 minutes past 5, दिस इज अ ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर। दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा। वेल, हम तो नहीं चाहेंगे कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो, कोई तकलीफ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन गेट इन टच विद अटर्नी ओमर ख्वाजा बिकॉज ही विल फाइट योर केस। दैट्स राइट, आप जो कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं वो आपको मिलनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ अटर्नी ओमर ख्वाजा आपको दिला सकते हैं बिकॉज ही नोज how to deal with these insurance companies. So give them a call, 469-300-5046. Fees ki chinta na kare, they're not going to charge you anything unless you win the case, which is they win the case for you. So remember, that's Attorney Omar Khwaja. You can visit attorneyomar.com. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam? Hello?
1: Hello, Amreen ji.
0: Hi, who is this?
1: I just want to say, this is Renu from Tacos by Renu.
0: Okay.
1: Aapko batana tha, you are doing an amazing job here.
0: Oh, thank you so much. I appreciate it.
1: I was driving out of Dallas and aapka program shuru hua, but mujhe wo itna achha laga aur signal ja raha tha because I was driving. So maine immediately Fun Asia app download kiya.
0: Wow. Standing ovation aapke liye. Good job. That's the way to go. Fun Asia ko saath saath rakhna hai.
1: Yes, I never downloaded the app, but today I felt the need ki aaj mujhe download karna hai because I didn't want to miss your show.
0: So sweet. I feel honored.
1: Thank you.
0: तो आप गाना तो बताइए, कोई खास गाना जो आपने सुनना है या मैं अपनी तरफ से कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर दूं?
1: नहीं, मुझे सुनना है धुरंधर द रिवेंज का, प्यार करने वाले जो दिल का रिमिक्स है वो।
0: प्यार करने वाले,
1: हम प्यार करने वाले, धुरंधर द रिवेंज।
0: ओके, ठीक है, लेट मी फाइंड दैट एंड प्ले इट फॉर यू। वैसे आपने ये तो बताया कि कहीं जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं?
1: मैं सैन एंटोनियो जा रही हूँ। अच्छा। थोड़ा डैलस से बाहर आते आते वो सिग्नल चला गया था, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग ऑन योर ऐप।
0: आई एम सो ग्लैड। ऑलराइट, ये रहा आपका गाना, एंड ड्राइव सेफली और वापस लौट के आइएगा, हम आपके इंतजार में रहेंगे। हियर इज हम प्यार करने वाले।

लवर्स, प्यार करने वाले। ओरिजिनल सॉन्ग दिल का था, लेकिन हमने प्ले किया रेनू जी के लिए ये धुरंधर रिवेंज वर्जन। आई होप द रेस्ट ऑफ यू एंजॉयड इट एज वेल। अच्छा, कहीं मैंने सुना कि जिंदगी की शुरुआत एस से होती है, क्या ये सही है? वैसे सोचें एस से अगर, तो शायद एस से सही है, क्योंकि एस से सूरज है, सुबह शाम है, समय है। उसके बाद एस से क्या होता है, सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, सास ससुर साला साली, और फिर सत्यानाश भी हो जाता है, और फिर बुलाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है साकी को एस से।

आई नो कि इसका जो रीमिक्स वर्जन है जो कि नेहा कक्कर ने गाया वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन यू हैव टू एडमिट ओरिजिनल इज ओरिजिनल. सुखविंदर सिंह डिड द बेस्ट जॉब पॉसिबल विद दिस ट्रैक.

जॉनी रॉय पर पिक्चराइज किया गया. ये गाना नेहा कक्कर की आवाज में सुन रहे थे आप. एंड इट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म KGF. राइट नाउ आई एम प्लेइंग बैक टू बैक अपबीट म्यूजिक. होप यू आर एंजॉयिंग माय सिलेक्शन. एंड इफ यू आर एंड यू फील लाइक डांसिंग, देन यू नो कि अगर आपको अपनी पार्टी में यू नीड अ डीजे हु नोज हाउ टू प्ले म्यूजिक, हु नोज हाउ टू मिक्स म्यूजिक, well then you can call me 214-725-7466. That's 214-725-7466. Aapki host, aapki dost, Amreen Hasnat.

डैनी लियोनी की ठुमको पर सुन रहे थे आप ये गाना लैला में लैला, टेकन फ्रॉम शाहरुख खान फिल्म रईस. होप यू गाइस एंजॉयिंग इट राइट नाउ. आई नो इट्स संडे बट स्टिल व्हाई नॉट, वी कैन स्टिल पार्टी राइट. सो हियर इज अनदर वन, आई नो यू आर गोना लव इट.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
10: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए
12: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में
13: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 द SBA लोन एक्सपर्ट्स फैसला क्लैरिटी के साथ
14: चिकन बनाना चिकन बनाना
15: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब make the chicken right.
12: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
17: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
18: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। इस खूबसूरत से संडे की शाम में 206 से 8 रहेगा आपका और मेरा साथ। आप भी जुड़ रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी दीवानी तूफानी बेगानी रेनी फॉगी गर्मी वाली। और जी हाँ, आज जैसे बहुत ही कड़ाके की गर्मी वाली कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

जी हाँ, ऐसी शानदार शाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एवरी संडे की शाम 6 से 8 साथ देने आती हूँ दोस्तों आप सभी के साथ। मैं बोले तो आपकी अपनी आरजे पूर्वा। ये शाम मस्तानी रहता है हमारे शो का नाम, जहाँ पर हम करते हैं कुछ गपशप, कुछ बातें और गाने सुनते हैं, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। अगर आपका पसंद का आपका गाना चाहिदा, अगर आप सुनना चाहते हैं, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। जो भी गाना रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबव। दैट इज द ओनली कंडीशन। विद लेकर चलती हूँ आपको अगले गाने की तरफ।

अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दोस्तों सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना जालिमा टेकन फ्रॉम द मूवी रईस। शाहरुख खान पे पिक्चराइज थी ये मूवी, आई एम श्योर आप सभी ने देखी होगी। वेल दोस्तों हल्का फुल्का शो चल रहा है, यहाँ पर कोई थीम बेस्ड नहीं है, तो अगर आपका कोई पसंद का गाना आप सुनना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। अगला गाना मीनाक्षी जी के रिक्वेस्ट पर प्ले होने वाला है उनके हस्बैंड के लिए, सो हियर इट गोज़।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
7: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
8: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
8: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Zindagi ke kai rang. Phanisha Radio ke sang.

जिंदगी के कई रंगों को सुनने के लिए एंजॉय करते रहिए 104.9 FM Fun Asia Radio। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। बहुत ही कड़ाके की धूप है दोस्तों बाहर, और अगर आप अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं मस्त मस्त ठंडी हवा का एसी चला के, तो प्लीज ट्यून इन कीजिए 104.9 FM Fun Asia Radio पर, क्योंकि यहाँ पर गाने हो चल रहे हैं बहुत ही कमाल धमाल के। तो अगर आपको भी आपके पसंद का गाना रिक्वेस्ट या फिर यू नो डेडिकेट करना है किसी को, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना टेकन फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरी. सोनम कपूर और इमरान खान थे, पिक्चराइज था ये मूवी. श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा ने ये गाना गाया था, और स्पेशली सोना महापात्रा ने इसमें ये वाला पोर्शन गाया था. इट गोज लाइक दिस.

जी हाँ, दिस वॉज द पोर्शन संग बाय सोना मोहापात्रा एंड बाकी का पूरा गाना श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज में गाया था। वेल, इसी प्रकार के गाने यहाँ पर चलते रहेंगे ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर। मैं हूँ आपकी अपनी अपूर्वा। अगर कोई गाना रिक्वेस्ट या डेडिकेट करना चाहते हैं 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अगला गाना नीता शर्मा जी की तरफ से आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ। अरविंद से हमें सुन रही है, तो चलिए एंजॉय दिस ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी गला।

तृप्ति दिमरी की डेब्यू मूवी थी दोस्तों ये, जिसका नाम था कला। बहुत ही म्यूजिकल फिल्म है। अगर आपको अच्छे गाने या फिर म्यूजिकल ड्रामा पसंद है तो प्लीज़ आप ये मूवी देख सकती है। थोड़ी सी सैड है बट अमित त्रिवेदी का म्यूजिक मेक्स इट मोर मीनिंगफुल एंड मोर मैजिकल। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले बता दूं द ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन, सो यू कैन मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com।